0: Desert, Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुककीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना
5: सिग्नेचर। कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

आप सुन रहे हैं फन नेचर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी अभी ब्रेक के पहले जो है हमने एक गेमिंग सेशन किया, काइंड ऑफ उसमें गिव अवे राउंड किया और मुझे बहुत सारे कॉल्स आए जो कि मैं उठा नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमको डिटेल्स वगैरह भी लेने होते हैं और लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं जब गेम्स वगैरह हो रहे होते हैं, गिव अवेज हो रहे होते हैं। तो ये सोच के ना मैंने ये डिसाइड किया है कि ये नेक्स्ट वन आवर भी गेम्स को ही डेडिकेट किया जाए। भाई सैटरडे को फील तो इंटरटेनमेंट ही होना चाहिए, फन ही होना चाहिए। तो ये आप गाना एंजॉय कीजिए ऊंचा लंबा कद, उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।

और अब शुरू करते हैं हमारे गेम्स का सेशन. और इसके पहले ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देती हूँ कि इस पे कोई गिव अवे नहीं है, लेकिन आपको मजा जरूर आने वाला है. तो लेट्स एंजॉय, लेट्स प्ले इट फॉर द सेक ऑफ फन. और मैं आपको देने वाली हूँ 3 क्लूज और आपको बताना है कि ये कौन सा वर्ड है जो कि इस पूरे 3 क्लूज को मैच करता है, डिस्क्राइब करता है. रेडी? क्लू 1 है कि इसका कनेक्शन बॉलीवुड से है. क्लू नंबर 2 है कि इसके बिना बहुत सारी स्टोरीज इनकम्प्लीट सी लगती हैं. और थर्ड क्लू है कि शाहरुख खान की मूवीज में इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसके लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं. तो अगर आपको आंसर पता है तो आपको कॉल करना है 9722355555.

हमने आपको 3 क्लूज दिए थे और आपसे कहा था कि आपको बताना है कि हम किस वर्ड के बारे में बात कर रहे थे, और वो क्लूज कुछ ऐसे थे कि इसका कनेक्शन बॉलीवुड से है, इसके बिना जो है स्टोरीज इनकम्प्लीट लगती हैं, और शाहरुख खान की मूवीज में इसका खासा जो है इसका डिस्क्रिप्शन होता है, चर्चा होते हैं उसके बारे में, रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और सही जवाब दिया। इसका सही जवाब है प्यार, रोमांस, इश्क, मोहब्बत। और कनिका ने कॉल किया, साकेत ने कॉल किया, और बहुत सारे लोग, आई एम फॉरगेटिंग सम नेम्स, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और जो है रोमांस के बारे में बात करें, शाहरुख खान के बारे में बात करें, और उनका ये जो फेमस गाना है सूरज हुआ मद्दम, वो प्ले ना करे, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो लेट्स हियर इट आउट गाइस।

क्या मतलब सोनू निगम यार, इनकी वॉइस कितनी सूदिंग है, कितनी अमेजिंग है। मुझे तो मन करता है कि मैं उनके सारे गाने ना बार बार सुनूं। और अगर आपको भी ऐसा मौका मिले, सोचिए कि वो डैलस आए और आपको लाइव उनको देख के और वो आपके सामने गा रहे हो यही सारे अमेजिंग सॉन्ग्स, तो आपको कितना मजा आएगा ना। तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो ऐसी विश है वो पूरी ही हो चुकी है, क्योंकि सोनू निगम डैलस आ रहे हैं। सो गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। उनका जो शो है उनको इट्स कॉल्ड रिवोल्यूशन, ये हो रहा है ऑन सैटरडे सितंबर 26th। ओके गाइस, सितंबर 26th 8:30 PM को सैटरडे है, तो ज़्यादा आपको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। और लोकेशन मैं बता देती हूँ, इट्स क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन में। यहाँ मिलेगा आपको फेवरेट सॉन्ग्स और आइकॉनिक वॉइस ऑफ सोनू निगम, दैट टू एवरीथिंग लाइव। टिकट्स अवेलेबल हैं टिकट मास्टर पे, और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 855-360। और रेवोल्यूशन इट इज गाइस। ओके, सोनू निगम की इतनी बातें हो रही है, तो एक और उनका गाना जो है दिल डूबा वो बजा देते हैं। कितने वर्सेटाइल हैं वो एज अ आर्टिस्ट, आई कांट जस्ट इमेजिन।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
3: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
9: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
10: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
11: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram Tulsi. हाँ, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
13: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

झुमका आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। और आज का जो हमारा गेम का सेशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। बाय द वे, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उनको गेम्स के रूल समझा दूं कि मैं आपको दूंगी 3 क्लूज और आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ड है जिसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूं या फिर जिसके बारे में मैं बातें कर रही हूं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है या फिर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या आप कह लें तो आपको ये बताना चाहती हूं कि इस पे ना कोई गिव वे नहीं है, कुछ प्राइज मनी नहीं है, तो हम इसको सिर्फ फन के लिए खेल रहे हैं। एंड आई वुड लव इफ यू गाइस पार्टिसिपेट इन इट, क्योंकि मजा तो बहुत आ रहा है, कॉल्स भी बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 क्लूज में से पहला क्लू ये है कि ये यूएस में काफी डिफिकल्टी से मिलता है, मतलब बहुत इजिली आपको हर जगह नहीं मिलता है। क्लू नंबर 2, इसके स्मेल से घर की याद आ जाती है। और क्लू नंबर 3 है कि चाय के साथ इसका कॉम्बिनेशन लेजेंडरी है। आप बताइए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कॉल कीजिए मुझे @972-235-5555।

0: मैंने भी आप लोगों से ऐसा ही कुछ एक उलझा हुआ सवाल किया था, तीन उलझे से क्लूज दिए थे और आपको बताना था कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू तो ये था कि मैंने ये कहा था कि चाय के साथ इसका कॉम्बिनेशन लेजेंडरी होता है, और इसका जवाब है समोसा। जी हाँ, समोसा। और यूएस में समोसा जो है मिलना थोड़ा मुश्किल है, बहुत कम जगहों पर अच्छे समोसे मिलते हैं। और हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉल आए, सही जवाब दिया है समीर एंड समायरा ने। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना, अभी समायरा से भी इस बारे में बात हो रही थी कि समीर सैम, समायरा सैम, समोसा सैम, तो ये जो ट्रायंगल बना है वर्ड्स का, इससे भी काफ़ी उलझा दिया, इंटरेस्टिंग मज़ा दिला दिया मुझे भी। और समोसे के बारे में बात हो रही है, इंडियन क्यूजीन, इंडियन फ्लेवर फूड चार्ट्स की बात हो रही है, तो पेज 3 ईटरी की बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ मुझे लगता है कि फ्लेवरफुल चाट वगैरह है ना, मुझे स्ट्रीट फूड की जो याद है वो थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ पे मिल जाता है सब कुछ। इनके वाइब्स भी काफ़ी अमेजिंग है, वाइब्रेंट वाइब्स हैं, तो आप ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, या फिर डिनर के लिए भी जा सकते हैं। ये लोकेटेड है हब 121 में, और यहाँ पे इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता है मॉडर्न फ्लेवर के साथ, और फिर बनता है कबाब, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स। और अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए, विच इज page3eatery.com। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज जिंदा बंदा, रिक्वेस्टेड बाय सफी। सो सफी, दिस वन्स फॉर यू।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

भाई सावन का महीना है तो सावन में तो आग लगनी ही चाहिए, और ये आग हम लगाएंगे विद अमेजिंग सॉन्ग्स जो कि बजते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे. और एक और चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो है हमारी बातें और हमारे गेम्स. काफी कॉल्स आते हैं मुझे जब भी गेम्स होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लिसनर से बात करना. और लेट्स मूव टू द थर्ड राउंड जहाँ, अच्छा एक बार रूल्स रिफ्रेश कर देती हूँ भाई, अगर किसी ने अभी अभी ट्यून इन किया है तो. मैं आपको दे रही हूँ 3 क्लूज और डिस्क्राइब कर रही हूँ एक वर्ड को जिसको आपको गेस करना है. और इस पे ना कोई गिव अवे नहीं है, कोई प्राइज मनी नहीं है या फिर कोई गिफ्ट कार्ड्स वगैरह नहीं है. आई एम वेरी सॉरी एंड वी आर जस्ट प्लेइंग इट फॉर फन. रेडी? ओके. क्लू नंबर 1 है कि बचपन में इसका वेट हम बहुत एक्साइटेड होकर किया करते थे. क्लू नंबर 2 है कि इसके आने का मतलब है स्कूल से ब्रेक यानी कि छुट्टी. और क्लू नंबर 3 है कि गर्मी में दिस यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट. ओके, आपको कॉल करना है मुझे एट 972-235-5555.

हाँ जी, हमने आपसे पूछा था कि वो क्या है जिसका इंतजार हमें बचपन में गर्मियों में काफी ज्यादा हमें उसका इंतजार होता था। तो बहुत सारे कॉल्स आए, कुछ लोगों ने कहा समर वेकेशन, कुछ लोगों ने कहा रेन यानी कि बारिश, और दोनों ही जवाब सही हैं क्योंकि ये जो तीनों क्लूज थे ना वो ये दोनों वर्ड्स को डिस्क्राइब बखूबी कर रहे थे। और अर्चना एंड सुभाष ने हमें कॉल करके बताया कि यू नो इट शुड बी रेन, सो आई डेफिनेटली एक्सेप्ट योर आंसर। और ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो आपके लिए है क्योंकि आप बहुत ही प्यारे प्यारे कपल हो।

ओए अम्मा, मैं तो फिर से आ गई। मैं यानी कि आरजे सिमी, और फिर से तो आऊंगी ही, क्योंकि मेरा शो ना सैटरडे को 2 नहीं बल्कि पूरे 3 घंटे का होता है, 6 से 9। तो अभी भी हमारे पास 1 घंटा और है, और जितना ज्यादा टाइम आपके साथ, उतना ज्यादा फन, उतना ज्यादा मस्ती, उतना ज्यादा इंटरटेनमेंट। और फन और इंटरटेनमेंट के लिए हम तो भाई गेम्स खेल रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्लू ऑफ दिस गेम। और इसके बाद दूसरी जो है सेगमेंट शुरू होगा, और जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, या फिर एक बार रिवाइज करा देती हूँ रूल्स क्या चल रहे हैं गेम के। तो द गेम इज कि मैं आपको 3 क्लू दे रही हूँ, और आपको एक वर्ड डिस्क्राइब कर रही हूँ, और आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ड है जिसके बारे में मैं बातें कर रही हूँ। तो लास्ट गेम ऑफ द डे, तैयार हो जाइए, रेडी। क्लू 1 है कि ये रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लू 2 है कि ये ना फोर्स नहीं की जा सकती। एंड क्लू 3 ये है कि अगर ये एक बार टूट जाए ना, तो वापस बनाना मुश्किल होता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। आपको मुझे कॉल करके बताना है एट 972-235-5555। और हाँ, इस पे कोई गिव अवे नहीं है, प्राइज मनी नहीं है, हम सिर्फ मस्ती के लिए खेल रहे हैं। ओके गाइस।

हाँ जी, वी आर बैक फ्रॉम दिस अमेजिंग ट्रैक. और इसके पहले मैंने आपको दिए थे 3 क्लूज और आपसे पूछा था कि ये कौन सा वर्ड है जिसको जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. और क्लूज कुछ ऐसे थे कि ये रिलेशनशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फोर्स नहीं किया जा सकता, और अगर ये टूट जाए तो वापस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है. और लोगों ने कॉल किया और बताया कि इसका जवाब है भरोसा, यानी कि ट्रस्ट. और सही बात है भाई, प्यार हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट के बिना ना रिलेशनशिप टिकना थोड़ा मुश्किल सा लगता है. तो अगर आप किस रिलेशनशिप में हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपको अपने पार्टनर्स का ट्रस्ट मिलता रहे, आप उनका ट्रस्ट ब्रेक ना करें. और अभी इस सॉन्ग के बाद एक गिव अवे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड. गेम्स का सेशन तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअली खत्म कहाँ हो रहा है, अभी तो गिव अवे बाकी है. स्टे ट्यून्ड विद वनेश्वर रेडियो 104.9 FM.

अगर आप सैन इडली रेस्टोरेंट में जाके वहाँ का खाना ट्राई करेंगे, स्पेशली डोसा इडली और फिल्टर कॉफी, तो आपको भी ऐसा ही वाइब आएगा कि मजा ही मजा। और अगर मैं कहूँ कि बस आपको एक जवाब देने से इसमें ना कुछ डिशेस आपको फ्री मिल सकती हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड नहीं होगे? तो भाई वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का, और इसमें आपको मिलेगा जीतने पे ऑफकोर्स डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैन इडलीज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। जी हाँ, ये 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर से बना है। यहाँ के डोसा जो है काफी क्रिस्पी हैं, इडलीज काफी फ्लपी हैं, और साउथ इंडियन फेवरेट्स आपको जितने भी मील्स डिशेस याद हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और शहर की ना बेस्ट फिल्टर कॉफी अगर कोई मुझसे पूछे कि वो कहाँ मिलती है, तो ये यही मिलती है सैन इडली रेस्टोरेंट में। और जैन फ्रेंडली ऑप्शंस भी है भाई, अगर आप काफी पर्टिकुलर हैं या फिर आप फॉलो करते हैं जैन फूड को, तो यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। ये लोकेटेड है एट हाईवे 121 एंड कस्टर जंक्शन। और ना एक और इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि इसमें एक नहीं दो विनर चूज किए जाएंगे, तो अगर एक ने जवाब दे दिया है, आप थोड़े से लेट भी चल रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, लगे रहिए, हो सकता है कि मैं जो है नेक्स्ट विनर जो है वो आप ही हो। दो विनर के चांसेस है, रेडी हो जाइए। बहुत इजी सा सवाल है, सवाल है अराउंड रणदीप हुडा, क्योंकि उनका जो है बर्थडे था दो दिन पहले आई गेस अगस्त 28 को। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उनकी डेब्यू मूवी कौन सी थी और किस ईयर में रिलीज हुई थी। रणदीप हुडा के बारे में बात कर रही हूँ, जी हाँ, उनकी डेब्यू मूवी बतानी है आपको एंड द ईयर ऑफ रिलीज ऑफ द मूवी। आपको मुझे कॉल करना है एट 972-235-5555।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: Floors clean?
6: Check.
5: Windows clean?
6: Check.
5: Kitchen clean?
6: Check.
5: Air ducts clean?
6: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
7: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: Same order again?
9: Same pizza,
8: same taste,
9: same story.
8: Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: हमें हमारे गिव अवे राउंड के विनर्स मिल चुके हैं एंड आज के दो लकी विनर्स हैं वो हैं हीथ एंड बिताना. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपको मिलता है सैन इडली की तरफ से अब एक डोसा जो आपकी चॉइस का होगा प्लस एक फ्री फिल्टर कॉफी. तो डू एंजॉय इट. ओके गाइज, एंड yeah, I'm sorry. So there was a technical glitch. I got confused while I'm fixing it. I hope you enjoyed the next song.
1: Boring din charya mein. Gholiyan.

एक बात बताइए, जब आप स्केड्यूल वगैरह करके अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सब कुछ परफेक्टली लेके भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके डॉक्टर जो है आपके साथ मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड करते हैं? लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एक जगह है जहां पे ना डॉक्टर्स आपके साथ पूरे के पूरे आधे घंटे बिताते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सारी समस्याएं सुनते हैं अच्छे से टाइम देके, और फिर वो आपको डायग्नोस करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं, और दिस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। क्योंकि पैशन हेल्थ पे ना आपको एक पेशेंट नहीं, आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। तो या अगर आपको जरूरत है, आपकी फैमिली को जरूरत है, आपके फ्रेंड्स को जरूरत है एक हेल्दी चेकअप और डिफरेंट सर्विसेज लेने की, तो आप उनको जरूर सजेस्ट करें पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। और सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं आपको अपना एनुअल फिजिकल चेकअप कराने में। एंग्जाइटी केयर अगर आपको चाहिए तो भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे फाइब्रो स्कैन भी होता है फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, और अगर विटामिंस की डेफिशिएंसी टेस्टिंग करानी है तो भी दिस इज अ परफेक्ट प्लेस, आप जरूर जाएं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने के लिए आपको कॉल करना होगा एट 214-666-6259। आई विल रिपीट द नंबर फॉर यू, इट्स 214-666-6259।

आप सुन रहे हैं आरजे सिमी को एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म इन यूएस. सो अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप अगर आपका एक कोई स्टार्टअप हो या फिर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हो, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि टेलर किया जाता है आपके नीड्स, आपकी जरूरतों के हिसाब से. ये ऑफर करते हैं बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशन से लेके प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. ये आपको मदद करेंगे कि आपके जो फाइनेंसेस है ना वो ऑर्गेनाइज्ड हो, कंप्लायंट हो, साथ ही साथ फ्यूचर रेडी भी हो. काफी ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है और आपके सक्सेस के लिए कमिटेड है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और ये आपके पार्टनर बनेंगे इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर यू. आप इन्हें कॉल कर सकते हैं एट 4699429888 या फिर आप इनके वेबसाइट पे भी जाइए विच इज agfintechs.com.

0: जी सैटरडे नाइट है और वाइब और मूड बुरी बिल्कुल यही रहता है कि सारी रात जो है हम डांस करें नाचे, लेकिन उसके बाद जब हम डिस्को वगैरह से निकलते हैं बहुत थके हुए होते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो कितनी मुश्किल होती है। और बिल्कुल इसका ख्याल रखें, अगर आप कहीं ऐसे मस्ती मूड में जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू रिटर्न सेफली, क्योंकि बहुत बार कार या फिर ना एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, स्लिप और फॉल इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। और अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाता है तो आई कैन टेल यू whom you have to go to, it's attorney Omar Khwaja, क्योंकि ये मदद करेंगे आपको आपके केस को फाइट करने में और इंश्योर करेंगे कि आपका जो कॉम्पनसेशन है, जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी ड्यू कॉम्पनसेशन है, वो आपको जरूर मिले। और कितनी बार जो है बहुत दिक्कत होती है यार इंश्योरेंस कंपनी से डील करने में, उनकी पॉलिसीज वगैरह समझने में, तो उस केस में ना Omar Khwaja और उनकी टीम आपके लिए काफी हेल्पफुल मददगार साबित होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, You do not have to pay until and unless you win the case. तो इससे मतलब और अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं उन्हें 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज attorneyomar.com।
1: चमक चलो।

0: दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है कि आज का शो आपके फेस पे एक स्माइल जरूर लेके आएगा, यही मेरी कोशिश होती है हमेशा हर एक शो के साथ। और मैं हूँ आपकी आरजे सिमी, और अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, मेरा वक्त हो गया है घर जाने का। मिलते हैं फिर अगले शो में नए टॉपिक्स, नए सॉन्ग्स और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और म्यूजिक यानी कि 104.9 FM सुनते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर और बहुत सारा प्यार। बाय बाय।
1: What an idiot. God, what is he doing? God.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डेलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में? सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
3: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
6: Fikar not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye, The Jago Times available hai ek click par. JagoTimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada, 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
8: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
3: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
5: Plano, Richardson, and now at a brand new location, Sal's Hot Chicken, coming soon.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
11: तुमसे मिलके दिल का है.
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है.

0: on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Fanasia.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: अजी सुनते हो?
5: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
6: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
7: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
8: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया।
9: Plano Richardson and now at a brand new location, Sal's Hot Chicken coming soon.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
11: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
12: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
15: तुमसे मिलके दिल का है
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क

0: मैं हूं उमर शरीफ और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं फनेशिया।
1: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
2: I love it.
1: The ultimate celebration of music and rhythm.

ਤਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनेशिया पे।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
5: So, ruko jara, sabar karo.
6: Agla gana, full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Fun Asia.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा.
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
2: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनी शो 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: Hi, I'm Abhishek Bachchan, and you're listening to Funasia Radio. Thank you, all the listeners, for always being there, watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.
8: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?
9: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, Fun Asia पर ही आते हैं.

बस आशिकों पे रहे।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डेलिस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.
5: So, ruko jara, sabar karo.
6: Agla gana full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Fun Asia.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone, and you're listening to Funasia Radio.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: Yeah, this is Shakti Kapoor, and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: आज ही सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में? सब संभाल लेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
11: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
12: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
10: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन। साल्स हॉट चिकन कमिंग सून। हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
13: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir puja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
14: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
13: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, catering services, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
10: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
15: Floors clean.
16: Check.
15: Windows clean.
16: Check.
15: Kitchen clean.
16: Check.
15: Air ducts clean.
16: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
13: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
17: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
18: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

संडे गपशप के तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत. अ वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं. आज एक और नया दिन, नया संडे, नया शो लेकर आई हूं आपकी खिदमत में. अगस्त 23rd इज द डेट टुडे और जो है आज फोर्थ संडे है. पांच संडेज हैं इस महीने में, यानी कि अभी एक और संडे बाकी है आज के बाद अगस्त 30th. टुडे इज द अगस्त द 23rd ऑफ द मंथ, यानी कि अगस्त 23rd है आज. और बहुत ही सुंदर दिन है. मौसम डेफिनेटली चेंज हो रहा है. आई कुड फील द चेंज, आई कुड सी द चेंज. एंड अभी धीरे धीरे जो है बहुत ही एवरेबल ट्रांजिशंस भी होने लग जाएंगे. पतझड़ आ जाएगी जल्दी से ही. एंड बस यूं ही जो है फॉल के सीजन में हम कदम रख लेंगे. ऑल्दो टेम्परेचर्स आर स्टिल सोरिंग हाई, बहुत गर्मी है ड्यूरिंग द आफ्टरनून, ड्यूरिंग अर्ली इवनिंग. एंड धीरे धीरे जो है अब इसमें भी रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा. सो बस आप सबका मैं स्वागत करती हूँ. आरजे एकरूप 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. आपने ये नंबर याद रखना है. आई नो आप सबको याद है, लेकिन मेरा काम है रिमाइंड करवाना कि जब आपके मन में, जहन में कोई गीत आप गुनगुना रहे हों तो कॉल करके ज़रूर बता दीजिए कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. तीन घंटे का ये शो, 10 बजे तक मैं यहाँ पर आती हूँ संडे 7 से 10. एंड जस्ट कीप द कॉल्स कमिंग इन. शो का आगाज़ करते हैं इस गीत के साथ. बहुत ही अच्छा सॉन्ग है. हाल कैसा है जनाब का.

चलती का नाम गाड़ी, मधुबाला एंड किशोर कुमार, द टू वंडरफुल मच लव्ड एक्टर्स ऑन स्क्रीन. मधुबाला जी तो एब्सोल्युटली ऑल टाइम फेवरेट. अगर आप हिंदी मूवी सिनेमा हिंदी सिनेमा को पसंद करते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ को पसंद करते हैं, तो आप डेफिनेटली मधुबाला जी के फैन होंगे. दैट्स गिवन. शी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन द मूवी इंडस्ट्री. बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्टिंग, एंड यंग एज में चली गई, लेकिन बहुत कुछ देकर गई हमें, म्यूज़िक लवर्स को, मूवी लवर्स को, और जो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी एक्टिंग को, खूबसूरती को, और जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं लाइफ में उनको जो अप्रिशिएट करते हैं, वो डेफिनेटली मधुबाला जी को भी बहुत पसंद करते हैं. हाल कैसा है जनाब का? बोल, ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना. थैंक यू फॉर योर फ़ोन कॉल्स. ऐसे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं. आपके पसंद के गीत यहाँ पर मैं लाइनअप करती रहती हूँ, एंड जो है यही बस यूं ही 3 घंटे निकल जाते हैं. 7:22 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. 104.9 FM फन एशिया रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर मैं आरजे एक रूप पेश कर रही हूँ आपके लिए संडे गपशप.

0: ब्रेक का टाइम होने वाला है। ये फिल्म मुगले आजम का गीत बहुत बेहद पॉपुलर सॉन्ग एंड उससे भी ज़्यादा जिन एक्टर्स पर फिल्माया गया उनकी पॉपुलैरिटी तो हमेशा से बहुत ज़्यादा ही रही है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये वाला जो शो है मेरा, ये एजी फिनटेक्स स्पॉन्सर करते हैं। दे आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस। इनके पास बहुत सारे इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिनको वो टेलर करते हैं आपकी नीड्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अराउंड। और जो भी आपका अनटैप्ड पोटेंशियल है आपके बिजनेस का या आपका जो आपको अभी तक नहीं पता, ये उसको डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आपका टैक्स जो है फाइल कर देते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, मैक्सिमम फ़ायदा हो। एजी फिनटेक्स, दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड दे डू गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। आपने अगर उनके साथ रابطہ कायम करना है तो फिर उनका फ़ोन नंबर है 469-942-9888, या फिर आप उनकी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, agfintechs.com। एजी फिनटेक्स जो कि फाइनेंशियल टैक्स जो फर्म है उनके बारे में मैं आपको बता रही थी, 469-942-9888, agfintechs.com है उनकी वेबसाइट। ब्रेक पर जाने वाले हैं, अबाउट 10 सेकेंड्स। आप कॉल्स ज़रूर कीजिए, फ़ोन लाइंस ओपन है 972-235-5555। मैं हूँ आरजे एकरूप, स्टूडियो में 10 बजे तक। आई बी राइट बैक।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
4: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
5: आने वाले खाने में डोसा।
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
7: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
8: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
12: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्विंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
18: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
17: Fikar not. We have the perfect solution.
16: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
19: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
20: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
21: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
22: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
23: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
24: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
25: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
26: तुमसे मिलके दिल का है।
24: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
25: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

स्वागत है एक बार फिर से आप सबका. थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल्स. थैंक यू सो मच आप की जो इतनी अच्छी विशेज आ रही हैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया. दिस इज़ आरजे एकरूप. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. 104.9 FM फनीशिया रेडियो की फ्रीक्वेंसी. 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं यहाँ पर होती हूँ. संडे गपशप, हफ्ते में एक दिन आपसे मुलाकात होती है. वो 3 घंटे की मुलाकात होती है और इस बार तो जो है 5 संडेज हैं अगस्त में, तो 5 बार मुलाकात होगी. और अभी आज 4th संडे है. नेक्स्ट संडे इज़ आल्सो पार्ट ऑफ अगस्त, तो एक और बार मुलाकात हो जाएगी इस महीने में बिफोर वी एंटर इनटू द 9th मंथ ऑफ द ईयर. देखिए टाइम का पता भी नहीं चलता. ऐसे लगता है कि अभी तो 2026 शुरू हुआ था और अब देखो हम लोग फटाफट से 9वें महीने में भी आ जाएंगे. सितंबर शुरू होने हो जाएगा जल्दी से ही. टाइम फ्लाइज बाय फास्ट और अगर इसको सीज कर लें हम अच्छा, उस मोमेंट का कुछ यूज़ कर लें तो फिर वो जो है वक्त ज़ाया नहीं जाता. शब्द भी एक भोजन की तरह ही होते हैं. जो हम बोलते हैं वो भी एक भोजन की तरह ही होता है. जब आप उनका प्रयोग करें, शब्दों का प्रयोग करें, तो उन बोलने से पहले चख लीजिए. अगर आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर दूसरों को भी मत परोसिए. अगर अच्छा शब्द, अच्छे शब्द होंगे तो ही परोसिए, अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर उनको अपने तक ही रहने दीजिए. जैसे हम जो डिलिशियस फूड नहीं होता वो हम नहीं खाते या दूसरों को नहीं देते, तो उसी तरह से जो है हमारे शब्द भी वैसे ही होते हैं. आज का ये छोटा सा ज्ञान अच्छा विचार आज के लिए. तो बस यूं ही बातें अच्छी अच्छी आप भी मुझे बताइए और फिर मैं भी उनको यहाँ पर रिले कर दूंगी आपकी तरफ से ऑन एयर. या अगर आप ऑन एयर आना चाहते हैं, कुछ अच्छी बात बताना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम टू डू सो एज वेल. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो.

1972 की ये फिल्म डेफिनेटली नोन फॉर इट्स म्यूजिक। इसमें जो है रणधीर कपूर थे और उनके साथ रेखा। सो ये RRR का कॉम्बिनेशन, रामपुर का लक्ष्मण, रेखा एंड रणधीर कपूर। सो ये सब मिलकर इन्होंने ये फिल्म बनाई 1972 में। मनमोहन देसाई जो कि इतने वेल नोन डायरेक्टर थे अपने टाइम के, एंड डेफिनेटली उनकी जो मूवीज़ थी बहुत ही कमर्शियल। ही न्यू द सीक्रेट रेसिपी, वो इट वाज नॉट रियली अ सीक्रेट, बट जो भी वो बनाते थे एवरीबडी न्यू वो लोग क्या, वो मनमोहन देसाई क्या डालते हैं अपनी फिल्मों में, और वो फिल्में जो हैं पॉपुलर होती हैं। सो ही वॉज वेरी ड्रामेटिक, ही वॉज बोल्ड, ही वॉज ट्रेडिशनल एट द सेम टाइम, और उनकी फिल्मों में ये सारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स एलिमेंट्स होते थे। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इनकी जो हैं फिल्में बहुत अच्छी मानी जाती थी। एक्टर्स वुड यूज़ टू लव वर्किंग विद हिम। जब भी इन जो हैं दिग्गज कलाकारों से बात इनकी जब इंटरव्यूज़ सुनो देखो, तो हमेशा जो है मनमोहन देसाई जो डायरेक्टर थे उनका कहीं ना कहीं नाम ज़रूर आता है, और ये सब एक्टर्स जो हैं उनकी काफ़ी प्रेज़ करते हैं। आर डी बर्मन का म्यूज़िक, अगेन अनदर आर इन द मिक्स। जी हाँ, राहुल देव बर्मन। और ये फिल्म लाइक आई सेड 1972 में आई थी, अगस्त के महीने में ही आई थी। 972-235-5555 है स्टूडियो का फ़ोन नंबर। हमारी लिसनर जिन्होंने मुझे बोला 740 के बाद शुड बी इन द कार अगेन, तो उनकी चॉइस का ये वाला सॉन्ग बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। आशा भोंसले जी की आवाज़ है और फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

जो द ग्रैंड कनाल है वेनिस में, इटली में, वहाँ पर ये सॉन्ग जो है शूट हुआ था. दो लफ्ज़ों की है ये कहानी, दिल की कहानी. 1979 की फेमस फिल्म जिसको शक्ति सामंता जी ने डायरेक्ट किया था, द ग्रेट गैम्बलर. इसमें स्टार स्टारेड फिल्म थी ये. अमिताभ बच्चन तो थे ही ऑफ कोर्स डबल रोल में, एंड देन जीनत अमान, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त एंड मदन पुरी. सभी अच्छे अच्छे एक्टर्स, सभी अच्छे अच्छे गुंडे भी इस फिल्म में थे, द ग्रेट गैम्बलर, विच वॉज अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्शन सस्पेंस थ्रिलर, सब कुछ ही था इस फिल्म में. अगेन आर डी बर्मन का एवर ग्रीन म्यूजिक एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग विद इन अ ब्यूटिफुल फिल्म. होपफुली हमारी लिसनर जिन्होंने कहा था कि 7:40-ish के बाद लगाना, 7:40-41 के अराउंड लगाना, तो उन्होंने ये सॉन्ग सुन लिया होगा. यू आर प्रॉबेबली बैक इन योर कार, एंड कार में तो ऑफ कोर्स ऐसे सॉन्ग्स इतने अच्छे लगते हैं व्हाइल यू आर ड्राइविंग, तो बहुत मज़ा आता है इतने मेलोडियस सॉन्ग्स सुनकर. ये वाला अगला सॉन्ग थोड़ा रस्टिक है, थोड़ा रूरल सेटिंग में है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है, दिलीप कुमार एंड वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया है. बहुत सुंदर सॉन्ग.

एक और बहुत अच्छा सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, वो मैं लगाऊंगी. इट विल टेक अस इनटू द ब्रेक, एंड देन ब्रेक के बाद आके और भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं आपकी चॉइस के. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्ले दोज एज आई गेट द कॉल्स. फॉर राइट नाउ इट इज दिस सॉन्ग.

स्वागत है एक बार फिर से आप सबका. थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल्स. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एक रूप. आप सबका स्वागत करती हूँ. इतने अच्छे अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, मतलब अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं और वो मैंने यहाँ पर लाइन अप कर दिए हैं. ब्रेक के बाद अभी रिज्यूम करूँगी. 8:05 हो रहे हैं स्टूडियो की क्लॉक में एंड टुडे इज़ द 23rd डे ऑफ दिस वंडरफुल 8th मंथ. अगस्त 23rd है आज की डेट और ये वाला जो सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है एंड हमारे लिसनर बहुत अच्छे सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करने के का बोस्ट करते हैं. वो कहते हैं कि मेरे पास हमेशा से बहुत अच्छे सॉन्ग्स होते हैं एंड एक्चुअली ही डज. ज़बरदस्त कमाल के सॉन्ग्स जो हैं वो बैक टू बैक दो जो हैं जिनकी रिक्वेस्ट करते हैं. तो दो में से सबसे पहला जो है फर्स्ट सॉन्ग वो मैं प्ले करूँगी एंड देन राइट अवे उसके बाद उन्हीं की चॉइस का सेकेंड वाला जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग है वो मैं प्ले करूँगी. ये वाला सॉन्ग है आई थिंक बाबर है शायद इस फिल्म का नाम. थोड़ी पुरानी फिल्म है, बाबर ही लग रहा है मुझे तो इस फिल्म का नाम. मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है और जो है म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन, जिनके बहुत अच्छे सॉन्ग्स रहे हैं हिस्टोरिकली. अगर जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था रोशन साहब ने, जो कि ऋतिक रोशन के दादाजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे गीतों को कंपोज किया है एंड आई एम श्योर दिस वन वुड आल्सो बी वन ऑफ द फैंटास्टिक सॉन्ग्स दैट ही कंपोज्ड. मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़.

हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म जिसका नाम बाबर. ऑब्वियसली बाबर वी नो वाज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर इंडिया जब वो आए थे मुगल एम्परर, एंड देन फिर आगे उनकी लिनेज चली थी. सो आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस फिल्म. मैंने ऑफकोर्स देखी भी नहीं है. 1960 की ये फिल्म है बाबर, और रोशन साहब का म्यूज़िक है. रोशन, अगर आप कभी उनको फॉलो करें या आप उनके सॉन्ग्स सुने तो आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा, रियलाइज़ होगा, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस फैक्ट कि इतने अच्छे सॉन्ग्स जो इंडस्ट्री में आए हैं, पुराने जो हम जिनको कहते हैं रेट्रो सॉन्ग्स, काफ़ी सारे जो हैं वो रोशन साहब के कंपोज्ड सॉन्ग्स हैं. ही वाज वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री बैक देन. और उनकी इनफैक्ट एक आई थिंक उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है. इट इज़ ऑन वन ऑफ दीज ब्रांडेड नेम्स. मैं अब नाम तो नहीं लूँगी, आई लीव इट अप टू यू. आप उसको ढूँढें एंड बहुत मज़ा आएगा. दे टॉक अबाउट रोशन, एंड देन फिर आगे उनके दो बेटे राकेश रोशन एंड राजेश रोशन, एंड देन ऑफकोर्स ऋतिक रोशन की लाइफ पर भी वो टच अपॉन करते हैं. बट मोस्टली वो रोशन साहब पर ही जो है वो डॉक्यूमेंट्री है. सो ये उन्हीं के कंपोज सॉन्ग्स में से एक ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन जो हमने सुनी. हमारे सेम लिसनर इस सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं. फिल्म का नाम है बहारों की मंजिल.

अगस्त में इस जबरदस्त एक्ट्रेस का जन्म हुआ था. शी वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 1st. ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट मंथ है इंडस्ट्री के लिए, एक्टर्स के लिए. और ये फिल्म बहारों की मंजिल, इसमें मीना कुमारी जी को सबसे पहला जो है, जब फिल्म फेयर ने ये अवार्ड्स देने शुरू किए थे, व्हेन दे स्टार्टेड विद दिस सेरेमनी, द फर्स्ट सेरेमनी एवर, उसमें जो कैटेगरी थी बेस्ट एक्ट्रेस की, उसमें सबसे पहला अवार्ड मीना कुमारी जी को ही मिला था. शी वॉज द रिसिपियंट ऑफ द फर्स्ट एवर फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड सेरेमनी. एंड देन जो है, फिर ऑफ कोर्स अभी तो हम लोग सिंस देन तो सब जानते ही हैं कि फिल्म फेयर का ये वाला जो अवार्ड होता है कितना प्रेस्टिजियस और कितना अच्छा माना जाता है. इट इज़ हाईली एक्लेम्ड. सो मीना कुमारी वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ द इनागरल फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, और उनको मिला था बैजू बावरा के लिए, जो आई थी 1954 में. वेल, ये वाला जो हम सॉन्ग सुन रहे थे, दिस फिल्म केम आउट इन 1968. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था. एलपी की जोड़ी जबरदस्त, बहुत कामयाब जोड़ी रही अगर म्यूजिक कंपोजर्स की बात करें. एंड फिल्म का नाम ये था बहारों की मंजिल. प्लीज़ कीप द कॉल्स कमिंग इन 972-235-5555. कुछ मेरे से कॉल्स जो हैं मिस भी हुए हैं बिकॉज आई वॉज ऑन द फोन स्पीकिंग टू अनदर लिसनर. तो आपका अगर मैंने कॉल अटेंड नहीं किया तो आप फिर से कॉल कर लीजिए. हमारी लिसनर जो कहती हैं कि उनको अपने यंगर डेज याद आ गए और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस जीनत अमान का ये वाला सॉन्ग वो सुनना चाहती हैं.

वेरी टिपिकल स्टोरी. दो प्रेमी भाग जाते हैं, शादी करते हैं एंड देन फिर उनको रियलाइज़ होती हैं जो लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं. फिर वो उनको कैसे फेस करते हैं एंड देन थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड देन फिर जो है क्लाइमेक्स होता है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ा एक्शन है एंड देन दे रीयूनाइट डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस एंड ऑल द चैलेंजेस दैट दे फेस इन द रियल लाइफ. तो ये थी स्टोरी इन अ नटशेल. अजनबी फिल्म जो आई थी 1974 में. एक अजनबी आई थी लेटर इन द लेट 90s और आई थिंक इट वॉज अर्लियर इन 2000s जिसमें करीना कपूर थी एंड उनके साथ अक्षय कुमार बिपाशा बासु भी थे थी शायद उसमें. पर वो तो बिल्कुल ही उसका तो डिफरेंट ही एकदम स्टोरी लाइन थी. इट वाज अ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन. तो वो वाली अजनबी भी बहुत अच्छी थी. बॉबी देओल भी थे आई थिंक. इट वाज नॉट अक्षय कुमार, इट वाज बॉबी देओल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो समथिंग कुछ ऐसी पेयरिंग थी एंड वो भी अच्छी फिल्म थी. सो काफ़ी बार होता है कि इंडस्ट्री में फिल्में बनती हैं, सेम नाम होता है लेकिन स्टोरी बिल्कुल ही फ़र्क होती है. बट फॉर सम रीज़न नाम उन्होंने वही यूज़ करना होता है जो पहले यूज़ हो चुका है. सो आई थिंक शायद पैटर्न नहीं होता नेम के ऊपर, स्टोरी तो फिर भी उसके कुछ राइट्स होते हैं लेकिन शायद नाम पे नहीं होता होगा बैक देन. तो तभी रिपीटेडली सेम नेम्स यूज़ कर लिया करते थे. जीनत अमान इस फिल्म में एंड राजेश खन्ना. 1974 की ये फिल्म और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने, हमारी एक लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी. अब मैं आपको जो है एक और अनाउंसमेंट, हमारे लाइव अनाउंसमेंट जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ. ओमर ख्वाजा जो कि पर्सनल इंजरी के अटर्नी हैं, यहाँ पर कम्युनिटी में अवेलेबल हैं उनकी सर्विसेज. अटर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिज़र्व इन केस गॉड फॉरबिड दैट यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट विच इज़ काइंड ऑफ गेट्स अगली लेटर ऑन. या फिर आप बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ कैसे डील करना है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है केस, तो फिर आप ओमर ख्वाजा को कॉल करें, उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाएं. फ्री कंसल्टेशन देते हैं वो 4693005046 पर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर लीजिए attorneyomar.com. इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट देन यू मे कॉन्टैक्ट अटर्नी ओमर ख्वाजा. वो आपको पूरी पूरी आपका केस फाइट करेंगे, जो आप डिज़र्व करते हैं कॉम्पेंसेशन वो आपको दिलवाएंगे एंड देन ही वुडन्ट चार्ज यू अ पेनी अंटिल यू आर कॉम्पेंसेटेड वेल. सो यू कैन गेट इन टच विद हिम 4693005046 और यू कैन विजिट हिज वेबसाइट विच आई सेड इज attorneyomar.com. ये जो है अटर्नी ओमर ख्वाजा की तरफ से ये जो सेगमेंट है ये स्पॉन्सर्ड हुआ है. हमारे लिसनर जो कहते हैं उनकी वाइफ डिम्पल सुनना चाहती हैं ये वाला सॉन्ग.

0: चुकी ना जाने तुम कब आओगे।
1: थैंक यू डिम्पल जी आपके फोन कॉल का। आई एम ग्लैड आपने ये सॉन्ग सुना एंड आई एम इवन मोर ग्लैड दैट यू लाइक इट। ऑफ कोर्स आप ही की चॉइस का है तो आपको तो अच्छा लगेगा ही। A.R. करदार इस फिल्म के डायरेक्टर एंड ये फिल्म जो है 1949 में आई थी एंड इस फिल्म के रिलीज के बाद मधुबाला जी, गीता बाली जी एंड नौशाद साहब जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया, इन तीनों की पॉपुलैरिटी इतनी स्काई रॉकेट हो गई, दे बिकेम स्टार्स, ओवरनाइट सुपरस्टार्स after the release of this film, because ये film लोगों ने इतनी पसंद की थी। Silver Jubilee बनाया था इस film को, meaning it ran in the theaters for consecutively at least 25 weeks or more, यहाँ कहा जाता है कि about 35 to 40 weeks तक ये film चली थी। So ये film दुलारी का हम song सुन रहे थे। I will be right back after this break.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Beta, 95% aaye?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

Welcome back. You are all listening to Sunday Gup Shup on 104.9 FM Fun Asia Radio. Ke saath aap jude hue hain. You are tuned in to our radio frequency, which is 104.9 FM Fun Asia Radio. Mera naam aap jante hain. Yahan ka jo phone number hai, wo bhi aap jante hain. Aur main ye bhi janti hoon ki aap sab jude hue hain is show ke saath, because aapke phone calls itne achhe wishes, itne achhe songs aur time nikalte hain aap is show ko sunne ke liye. Aur jitna maza mujhe aata hai yahan par 7 baje aane ka, jitna main excited hoti hoon pure hafte, that I look forward to coming here on every Sunday 7 AM. It seems like, and I feel your love for the show. I feel your love for our radio, which is Fun Asia Radio, through your participation, through your presence, and through your phone calls. So, tahe dil se shukriya. Kam mein khush rahe hum sab, to phir khushi ki kabhi kami nahi hogi. Because jo bhi hai, bahut acha hai. Gratitude, gratefulness, and jo attitude of gratitude hai, agar wo zinda rahega, wo hamesha hum har cheez mein khushi dhoondenge, to phir hum hamesha positive sochenge, optimistic sochenge. Therefore, kam mein khush raho, to khushi ki kami kabhi nahi hogi. 972-235-5555. वैसे फ़ोन कॉल्स ना जितने ज़्यादा आएँ मुझे उतनी खुशी मिलती है. कम फ़ोन कॉल्स आते हैं तो फिर लगता है कि सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, शो के साथ ट्यून्ड इन है या नहीं. सो फॉर दिस वन आई विल बी अ लिटल सेल्फिश कि आप जितने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करें तो अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर ऑल द टाइम विद अस. अच्छा, अब एक गाना है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, काफ़ी देर पहले आई थी, एंड मैंने उनको बोला था कि मैं आपके सॉन्ग ये है जो प्ले करूँगी डेफिनेटली, एंड आई प्ले दी सॉन्ग्स इन द ऑर्डर दैट I receive them. So here you go. Film ka naam unko yaad nahi aa raha tha. Film ka naam I think Patita hai shayad. Let me just double check the name of the film. Aur ye jo hai gaane ke bol hai. Nahi, film ka naam hai Chhaya. So gaane ke bol hai Itna na mujhse tu pyar bhada. Film to ye wali film hai Chhaya, and gaya hai isko Talat Mehmood sahab ne.

अपने टाइम की इतनी फाइन एक्ट्रेस रह चुकी हैं नूतन जी. शी कम्स फ्रॉम अ वेल नोन फैमिली. बहुत प्रोमिनेंट इनके पेरेंट्स एंड काफ़ी प्रोमिनेंट, व्हेन आई से प्रोमिनेंट एज इन की इंडस्ट्री में उनका काफ़ी नाम था. उन्होंने अपने लिए काफ़ी नाम बनाया हुआ था नूतन इस फिल्म में जिसका नाम शबाब. नूतन जी एंड भरत भूषण जी. सो ये भी एक बहुत अच्छी फिल्म उसका हम ये गीत सुन रहे थे, चंदन का पलना रेशम की डोरी. अगला सॉन्ग चलाने से पहले मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बता देती हूँ कि जब आप यहाँ पर स्केड्यूल करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट तो आपको 5 या 10 मिनट नहीं मिलेंगे, पूरे 30 मिनट्स मिलेंगे अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के साथ. बिकॉज जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ वो पूरे जो हैं 30 मिनट्स आपको समझते हैं, आप उनको समझ सकते हैं, तो दैट वे केयर बिकम्स ईजियर फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर यू. पैशन हेल्थ, यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर अ फैमिली टू देम एंड दैट इज़ वाई दे आर हियर फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर द होल कम्युनिटी. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर 30 मिनट्स इज ऑल इट ऑल्सो टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल एंड दे ऑल्सो केयर फॉर योर स्ट्रेस रिलेटेड नीड्स, एंगजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स एंड दे डू टेस्टिंग फॉर वाइटामिन B12 डिफिशेंसी एंड सो मैनी मोर सर्विसेज आर अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. यू कैन स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे 214-666-6259 to book your appointment. Passion Healthcare, your health is their passion. That is why they call themselves as Passion Health Primary Care and they are servicing the community. They are here to service you. You can call them at 214-666-6259. Ye agla song aapki pasand ka.

16वां साल फिल्म का नाम जो आई थी 1958, इसमें देव साहब एंड वहीदा जी, बहुत अच्छी फिल्म, एंड हेमंत कुमार साहब ने इस गीत को गाया, ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड ये हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, मैंने उनसे नाम नहीं पूछा बिकॉज़ इतने सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आई वाज जस्ट काइंड ऑफ लाइनिंग अप द सॉन्ग्स, बट आई एम श्योर आप ट्यून्ड इन हैं और आपने ये सॉन्ग सुना होगा और उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना हम सब ने किया। बड़ा अच्छा सा सॉन्ग है, कभी भी सुन लो, अच्छा ही लगता है। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, अबाउट 10 मिनट्स हैं ब्रेक आने में, एंड देन उसके बाद मेरे पास एक गिव अवे है जो कि मैं ब्रेक के बाद रिज्यूम करूँगी, एक सॉन्ग लगाऊंगी एंड देन उसके बाद हम अपना गिव अवे करेंगे। बट अंटिल देन we are going to listen to these really lovely songs. Another song sung by the same singer, Hemant Kumar. Ye wala song bhi bahut popular hai. Film ka naam hai Ja.

सोचिए अगर देवानंद साहब रॉयल इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लेते तो फिर हमें इंडियन वर्जन ऑफ ग्रेगरी पैक कैसे मिलते. जी हाँ, ही देवानंद साहब वॉज ऑलमोस्ट सेट टू ज्वाइन द रॉयल इंडियन नेवी, एंड देन जब उन्होंने अपना फॉर्म फिल आउट किया और फिर जब बैकग्राउंड चेक की बारी आई तो फिर जो है ब्रिटिश इंटेलिजेंस वाली जो टीम थी उन्होंने फाइंड आउट किया कि इनके जो है फैमिली कनेक्शंस थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ, तो इसीलिए फिर उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया. सो देवानंद साहब देन काइंड ऑफ फाउंड अदर वेज एंड उनको जो है अपना स्टारडम इंडस्ट्री में मिला. इनका करियर मोर देन 60 ईयर्स चला, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने. एंड लाइक आई सेड, इनका जो स्टाइल, इतना जो इनके जो हैंडसम एंड डैशिंग लुक्स थे कि इनको जो है हॉलीवुड एक्टर ग्रेगरी पैक के साथ कंपेयर किया जाता था. ऑल्दो देवानंद साहब हैड हिज ओन यूनिक आइडेंटिटी, हिज ओन यूनिक स्टाइल of talking and delivering his dialogues, bahut inki fan following thi, and there was a rumor that also says that he was banned from wearing a black suit because itne handsome lagte the ki jo ladkiyan hain wo faint ho jati thi inko dekhkar. So it is a rumor, obviously I don't know if this is true or not. मैंने भी बस पढ़ा ही है इधर उधर. सो देवानंद साहब नोन फॉर हिज एक्टिंग, हिज स्टाइल एंड सो मेनी थिंग्स. इन्होंने जो है सेल्फ मेड स्टार थे ये, ही वाजंट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. बहुत इन्होंने मेहनत की एंड इनकी मेहनत ऐसा रंग लेकर आई कि इनका करियर लाइक आई सेड मोर देन 60 ईयर्स इनका जो है नाता रहा बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ. बट वही होता है ना कि हम बोल तो देते हैं कि इनका नाता रहा इतना 60 मोर देन 60 ईयर्स इंडस्ट्री के साथ, बट इन रियलिटी ये ऐसे स्टार्स हैं जब तक इंडस्ट्री जिंदा रहेगी तब तक इनका नाम रोशन रहेगा. रादर ये कह सकते हैं कि जब तक इनका नाम रहेगा इंडस्ट्री अभी अलाइव ही रहेगी. सो दिस वाज देवानंद साहब फॉर अस. एक सॉन्ग अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सा लगाऊं, 3 मिनट्स बचे हुए हैं तो ये वाला सुन लेते हैं, पूरब और पश्चिम का सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: एक और लड्डू ले लो.
5: थोड़ी और बिरयानी.
4: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा.
6: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए.
7: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
14: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
12: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
17: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7747 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
12: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

Kishore Kumar, Rajesh Khanna. Well, let me just say Rajesh Khanna, Kishore Kumar, R.D. Burman, and Shakti Samanta. Ye itna killer combination, itni achhi filmein, itna achha music, itni achhi story, itni achhi acting. All in all came together to make a film called Kati Patang. Vaise to ek novel ke upar based thi ye film. Jis tarah isko direct kiya tha, jis tarah isko bade parde par utara tha, aur phir jis tarah us mein acting ki thi, oh my goodness. Bahut achhi film, and definitely this song always just wins our heart, undoubtedly. Acha, abhi song maine play kar diya hai. Ab time ho raha hai hamare ek giveaway ka. So giveaway is from a restaurant called San Idli. So ye jo restaurant hai, ye boast karte hain apni filter coffee ke liye. Aur yahan par jo filter coffee hai, wo bahut achhi hoti hai, very traditional, very typical. And San Idli restaurant ka naam hai. Aur jab aap ye win giveaway jeetenge, to aapko milega any dosa of your choice plus one filter coffee. So ye aap combination jeet sakte hain. I am going to be choosing two winners. To aapne agar ye restaurant ka giveaway pehle nahi jeeta hai, to aap zarur call karein. Let's give everybody an equal chance. Agar aap ye restaurant ka giveaway already jeet chuke hain, तो और आपको अगर आंसर आता भी है तो यू आर वेलकम टू कम ऑन एयर बट अ लिटल लेटर व्हेन आई हैव ऑलरेडी फाउंड द टू विनर्स. San Idli is the name of the restaurant, and this is located at the intersection of Highway 121 and Custer. तो काफी पास है ये रेडियो स्टेशन जो है मिकेनी में लोकेटेड है, और ये गिवअवे भी मिकेनी का ही है, 121 एंड कस्टर के इंटरसेक्शन पर है. San Idli restaurant, dosa of your choice plus one filter coffee. This is the giveaway, and I will be selecting two winners. तो question मेरा आपसे ये है कि आपको मुझे उन दो movies के नाम बताने हैं जिनमें रणबीर कपूर ने acting की है. Of course, he's the lead player, lead role है उनका, रणबीर कपूर. और उस film का नाम बताना है जिसमें उनके फादर का रोल किया था फारूक शेख ने, और उनके दादाजी का रोल प्ले किया था प्रेम चोपड़ा ने. सो यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ दोज टू फिल्म्स. ओह माय गुडनेस, आई कैन बिलीव इट. अभी बस मैंने क्वेश्चन पूछा है एंड फोन कॉल आ भी लग गई. तो चलिए, आई एम गोना गिव यू अ फ्यू मोर मिनट्स, एंड इन द मीन टाइम लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग व्हिच इज फीचर्ड ऑन हिज पेरेंट्स.

0: सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर,
1: सेल्समैन ऑफ द ईयर, उसमें उन्होंने उनके उस दादाजी का रोल प्ले किया था. ही
0: दादाजी का, यस
1: जी,
0: यस,
1: ठीक
0: पैटर्नल ग्रैंडफादर.
1: यू आर परफेक्टली करेक्ट. आप अपना नाम बता दीजिए ऑन एयर सबको, एंड देन आई विल स्पीक टू यू ऑफ एयर.
0: या आई एम आर्या,
1: आर्या,
0: आर्या कौर. या
1: आर्या, लास्ट नेम क्या बताया आपने?
0: KAR कौर.
1: ओ आर्या कौर, ठीक है. You are our second winner. San Idli is the name of the restaurant. So I'm going to give you more details. Just stay here. And once I am done talking to you, then hamare jo dusre, jo hamare first winner hain, then you're also please welcome to call me back so I can take your details as well. And then I can tell both okay. of you how to claim your prize. So aap yahin rukiye, Arya. I'm going to speak to you off air. Okay? Kahin nahi jana.
0: Okay, okay. Good, sure.
1: Yeah.

कंग्रेचुलेशंस टू नीरज एंड आर्या. आप दोनों ने सैन इडली जो गिव अवे दिया था रेस्टोरेंट सैन इडली का, आप दोनों विनर्स हैं. यस, द क्वेश्चन वाज रणबीर कपूर के फादर का रोल फारूक शेख ने ये जवानी है दीवानी में रोल प्ले किया था, एंड रॉकेट सिंह सेल्स मैन ऑफ द ईयर में रणबीर कपूर के दादाजी का रोल प्रेम चोपड़ा साहब ने रोल प्ले किया था. तो जो है ये दोनों हमारे लिसनर्स जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, दे बोथ आर द विनर्स. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड आर्या एंड नीरज हाउ टू क्लेम देयर गिव अवे एनी टाइम ड्यूरिंग दिस वीक. सो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल दैट कॉल्ड इन टू फॉर द गिव अवे. हमारे लिसनर जो कहते हैं मुकेश साहब का पूरा पूरा सॉन्ग सुनवाइए, सो दिस इज गोइंग टू टेक अस इनटू द ब्रेक.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
2: ना सब और प्राइस
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
11: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
12: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
12: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D5, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
18: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
17: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
18: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
17: और एंटरटेनमेंट,
18: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है।
17: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
18: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

समर ऑफ 69 दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ. वो ये जो रेफरेंस है ये एक चाइल्ड हुड या रादर कह सकते हैं कि टीनेज ईयर्स की तरफ जो नॉस्टैल्जिया है कि अपना सबसे पहला गिटार मिला, सबसे पहले मैंने सो एंड सो चीज़ें की, बैंड बनाया, एंड देन वट एवर आई वॉन्टेड टू डू दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ. सो ये जो सॉन्ग है दिस रिफर्स नॉट जस्ट टू द समर ऑफ 69, इट मीन्स मोर देन दैट. जो टीनेज ईयर्स की तरफ जो रिफ्लेक्शन एंड नॉस्टैल्जिया है ये उसको रिफर करता हुआ बहुत ही अच्छा सॉन्ग ब्रायन एडम्स की आवाज़ में. इन द टाइम दैट इट टेक्स यू टू अंडरस्टैंड अ 14-year-old, दे आर ऑलरेडी 15. सो ये कहा जाता है टीनेजर्स के बारे में कि जब तक आप उनको फिगर आउट करते हैं दे टर्न द नेक्स्ट ईयर ऑफ द टीनेज ईयर्स. सो येस, दिस फेज ऑफ लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन बींग इज़ जस्ट सो इंटरेस्टिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन एंड अराउंड. तो काफ़ी जो है ग्रोथ स्पर्ट होता है मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली. सो ये जो हैं बहुत वंडरफुल ईयर्स होते हैं किसी की भी लाइफ के, जो भी टीनेज ईयर्स हैं, डेफिनेटली टू बी चेरिश्ड. स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उनको तो सबसे बेस्ट लगते हैं ये टाइम्स, लेकिन कई बार उनके जो अराउंड होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. सो इन द टाइम दैट इट टेक्स यू टू अंडरस्टैंड अ 14-year-old, they already turned 15. So welcome back, this is Sunday Gupshup, RJ Ekrup. I am playing these songs for you in your request. Well, ye wala to aapka requested song nahi tha, ye maine socha ki main hi play kar dun apni taraf se. Summer of 69 Bryan Adams ka bahut hi popular song hai. Abhi jo hai main dekh rahi thi ki mere paas kuch giveaways, बोल नो नॉट गिव अवेज, लाइव अनाउंसमेंट्स हैं जो कुछ एक दो बचे हुए हैं, फटाफट करती जाती हूँ एंड देन आपके चॉइस के सॉन्ग्स भी प्ले कर रही हूँ अलॉन्ग साइड हॉको. आई थिंक इट इज़ कॉल्ड हॉको, HOCCO. दे आर हियर इन डैलस नाउ. दे आर दे हैव एंटर्ड द नॉर्थ टेक्सस मार्केट एंड इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर देयर लेजेंडरी चना पूरी आइकॉनिक सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज और द फेमस कोल्ड कोको, तो फिर आप ज़रूर जाइए. दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को, प्रेस्टन रोड पर इनकी लोकेशन है. द ऑथेंटिक फ्लेवर्स दैट हैव मेड इट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट loved food brands, HOCCO. I'm thinking it is Hoco. So come hungry and leave with a taste of India is what they boast. Like I said, they are located on Preston Road in Frisco. So definitely jaiye. It is at a great location. Hoco is the name of the restaurant. They bring to you authentic flavors that have made them as India's most loved famous food brands. ये वाला सॉन्ग ऐश्वर्या राय पर फिल्म आया गया, बहुत अच्छा सॉन्ग है.

थोड़ी देर पहले इस शो में हमने गाना सुना था, और वो गाना था फिल्म 16 साल का. वेल, लुकिंग एट दिस फिल्म गुजारिश, इस मूवी को भी 16 साल हो गए. दिस वन केम आउट इन 2010. संजय लीला बंसाली की ये फिल्म गुजारिश जो आई थी 2010 में, एंड इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स 16 ईयर्स, द स्वीट 16. एंड यस, दिस वॉज़ अ वेरी स्वीट फिल्म. बहुत अच्छी बनाई थी संजय लीला बंसाली ने, एंड ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. म्यूज़िक वॉज़ डेफिनेटली वेरी ग्रेट एज वेल. उसी हमने उसका एक छोटा सा सैम्पल देख ही लिया. इतना अच्छा म्यूज़िक, इतनी अच्छी आवाज़, और ये सुनिधि चौहान की आवाज़ का हम गीत सुन रहे थे. संजय लीला बंसाली ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, एंड इस फिल्म का म्यूज़िक भी दिया था. स्टोरी भी उन्हीं की थी, एंड स्क्रीन प्ले भी संजय लीला बंसाली. सो ही इज़ द वन मैन आर्मी. इतने टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, एंड ही इज़ गिवन अस सम ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, लार्जर दैन लाइफ. इनकी काफ़ी सारी फिल्में होती रही हैं इंडस्ट्री में, एंड दिस वन वॉज ऑल्सो क्वाइट एन आइकॉनिक वन. यूजअली 9:15 9:30 के अराउंड मैं हल्का हल्का आगे आगे बढ़ना शुरू करती हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भी होती हैं जो अभी तक मैं नहीं प्ले कर पाई. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, और अगर मैंने ये नहीं प्ले किया तो जो हमारे लिसनर हैं मुमताज़ एंड उन्होंने मुझे अपना नाम बताया था, मैं भूल गई, बट हियर यू गो. ये आपकी चॉइस का ये वाला सॉन्ग, सबसे बड़ा रुपया आई थिंक इज द नेम ऑफ द फिल्म.

0: Once more, na bibi na bachcha, na baap bada na maiya.
1: जो टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं या जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कहीं से भी छा जाते हैं. मैं बात कर रही हूँ महमूद साहब, द वेरी वेल नोन कॉमेडियन ऑफ द मूवी इंडस्ट्री. उन्हीं की आवाज़ में ये सॉन्ग सुन रहे थे. सबसे बड़ा रुपया इज द नेम द सॉन्ग एज वेल एज द मूवी. विनोद मेहरा एंड मौशमी चैटर्जी की ये फिल्म जिसका हम सॉन्ग सुन रहे थे. हमारे लिसनर कपल जिन्होंने कॉल करके बोला था कि ये सॉन्ग ज़रूर सुनवाइए, एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव इट. सो यस, इट इज़ अ नाइस सॉन्ग. हमारे एक और लिसनर हैं इंदरजीत जी, जो कहते हैं ये वाला प्ले कर दीजिए, बोल मेरे साथिया.

घड़ी की तरफ मेरी नज़र जा रही है. इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 9:58 होने में अभी 20 सेकेंड्स हैं. सो दैट मीन्स दैट आई हैव टू कंक्लूड द शो फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंगली नाइस रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स, जो कि बहुत खूबसूरत सॉन्ग, बहुत दिल को छू जाने वाले गीत. एंड बस यही जो अच्छा म्यूज़िक है, यही हम सबको बांध के रखता है. एंड थैंक यू टू फनीशिया for providing such a wonderful platform to all of us for coming together, staying together and enjoying these lovely melodies together. अब जो मैं प्ले करूँगी वो होगा आज के शो का आखिरी सॉन्ग, थ्री इडियट्स का जूबी डूबी. टुडे इज संडे, हैप्पी संडे, लेट द डेज लेजीनेस बी योर स्ट्रेंथ सो दैट यू कैन गैदर योर सेल्फ एंड रीसेट योर बॉडी क्लॉक फॉर द अपकमिंग वीक विच मे बी सो बिजी फॉर यू. सो विद दिस I'm going to take off for today. This is RJ Akroop signing off for today. I will see you next Sunday. Have a wonderful Sunday. Have a lazy Sunday. And have a wonderful week ahead. Bye-bye. I'll see you next Sunday. Bye.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
8: Plano Richardson, and now at a brand new location, Sal's Hot Chicken, coming soon.
9: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
11: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
12: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
11: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
13: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
14: Tujhe dekha to ye jana sanam.
15: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhumiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी, आपका और मेरा साथ होने वाला है पूरे 2 घंटे यानी कि 12 बजे तक। तो शुरू करते हैं आज का शो। आज का ना, आज के शो का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिबेटेबल भी है। आज हम बात करने वाले हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में कि क्या पैसा हैप्पीनेस खरीद सकता है, कैन मनी एक्चुअली बाय हैप्पीनेस। और जैसे कि मैंने कहा, ये काफ़ी डिबेटेड टॉपिक है। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी मूवीज में लोग कहते हैं कि पैसा है ना प्यार नहीं खरीद सकता। बट देन आई हैव ऑल्सो सीन सम इंटरेस्टिंग एड्स, रेस्टोरेंट में जाइए या कहीं पे भी जहाँ पे लिखा हुआ होता है एज अ टैग लाइन कि हु सेज मनी कान बाय हैप्पीनेस। आप ये वॉलनट कुकी आपने ट्राई किया, ये बहुत अच्छा है, यू नो पैसा दे के मिल सकते हैं। सो व्हाट्स योर व्यू अबाउट दिस टॉपिक, लेट मी नो बाई कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

आज हम बात कर रहे हैं इस खासा डिबेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि है कि क्या पैसा जो है खुशियां खरीद सकता है, कैन मनी बाय हैप्पीनेस। और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं इन फेवर ऑफ मनी एंड इन फेवर ऑफ हैप्पीनेस। और जो फिलहाल जो मुझे कॉल आया था वो उन्होंने अपना नाम एक्चुअली राहगीर बताया। तो ठीक है भाई, आज के हमारे मिस्टीरियस मैन ने कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग। आई टोटली अंडरस्टैंड कि पैसा जो है कभी कभी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, लेकिन ये बोलना ना थोड़ा अनफेयर तो है। अगर किसी के पास घर का रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे अरेंज करना मुश्किल हो रहा है, या फिर कोई अगर जॉब लूज होने के डर में है या फिर जॉब जो है चली गई है, तो ऑब्वियसली उनके केस में तो मनी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर एक्स्ट्रा मनी, हर सेविंग्स जो है उनकी लाइफ को बेटर बना सकता है। और बेटर लाइफ का मतलब ना ये भी होता है कि मोर पीस ऑफ माइंड। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी $4,000 है और सडनली वो इंक्रीज होके 7,000 या 8,000 हो जाता है फॉर द सेम पर्सन, सेम फैमिली, सेम पर्सनालिटी, लेकिन सडनली आपके पास एक ब्रीदिंग स्पेस अवेलेबल है, आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो, वेकेशन प्लान कर सकते हो, पेरेंट्स को भी कुछ गिफ्ट वगैरह कर सकते हो फैमिली को, और ये सब जो है करना ना इट्स काइंड ऑफ लग्जरी ऑल्सो। तो मनी कैन एब्सोल्युटली बाई सम फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। मनी आपको एक्सपीरियंस दे सकता है, मनी आपको कन्वीनियंस दे सकता है, मनी आपको सिक्योरिटी भी दे सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनी आपको चॉइस दे सकता है, जो कि सबसे बड़ी लग्जरी होती है एट टाइम्स, चॉइस। जी हाँ, आपको हर बार चीपेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करना पड़े, वो चॉइस, अपनी मर्जी की जिंदगी जीना, दैट चॉइस। व्हाट्स योर व्यू ओवर इट, लेट मी नो बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

यू आर लिसनिंग टू आरजे सिमी और हम अपना टॉपिक जो है कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि कैन मनी एक्चुअली बाय हैप्पीनेस, और ट्रस्ट मी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही है अबाउट लाइफ, मनी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। और कुछ बातों को मैं जरूर ऑन एयर भी मेंशन करना चाहूंगी। तारा जी का फोन आया था और उन्होंने बताया कि मनी तो ठीक है, लेकिन मनी के कारण न अपने ही घर में अपने रिलेटिव्स के साथ जो है एक जेलसी उत्पन्न हो जाती है आफ्टर वाइल, अगर कोई बहुत अच्छा कमा रहा है और कुछ लोग थोड़ा फिनेंशियली पीछे हैं, तो उसके कारण जो है रिफ्ट आ जा रहा है अपने ही फैमिली में, विच ऑफ कोर्स नोबडी लाइक्स बट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। एंड वी हैड अनदर कॉल फ्रॉम तरुण, जिन्होंने भी बहुत अच्छी सी बात कही कि देर इज नो एंड, कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है कि अच्छा आपको क्या लग रहा है $1 million पे खत्म, मतलब $1 billion इज इनफ कि अब ठीक है, अब जो है हम रिलैक्स कर सकते हैं। पर बहुत बार तो लोग जो है $1 million, मतलब $10 million, $12 million भी लोगों को

नहीं हो रहे हैं, तो वो कहीं पे वो लाइन है ही नहीं कि क्या नेसेसिटी है, क्या लग्जरी है, कहाँ पे हमें रुक जाना है और कितना कमाना है, कमाते ही जाना है, पता नहीं. एंड एक और हमारे लिसनर ने सिमिलर ओपिनियन रखा था, उन्होंने अपन को जो है एनोनिमस बताया, ही डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हिज नेम. बट या थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कहीं आप लोगों ने, बहुत इंटरेस्टिंग बातें. और जो है ये जो दूसरा साइड है कि कुछ चीज़ें हैं जो पैसा जो है नहीं खरीद सकता, जैसे कि आप जो है दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बेड तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद कहाँ से लाएंगे. आप एक्सपेंसिव फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन भूख नहीं ला पाएंगे. आप लग्जरी हाउस खरीद सकते हैं पर घर जैसी फीलिंग हर जगह मिले ये ज़रूरी नहीं है. आप गिफ्ट्स भी बाई कर सकते हैं बट जेन्युइन लव मिले, हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है. आप फॉलोअर्स बाई कर सकते हैं लेकिन रियल फ्रेंडशिप, दोस्ती जो है वो रेयर है. आप एक्सपेंसिव वॉच पहन सकते हैं लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया की बेस्ट हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत लोग उसी के लिए जो है काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेल्थ की गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं ले सकता. तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो कि पैसा नहीं खरीद सकता.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
5: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
6: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
5: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
2: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 पीएम टू 3 पीएम। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
11: Ek baar jo maine commitment kar di,
12: to phir sirf Funasia hi sununga.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिमी। स्टूडियो में वक्त हो गया है 10:37 और मैं आपके साथ रहने वाली हूं पूरे 12 बजे तक। तो अभी तो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। एक बहुत प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे, चांद सिफारिश एंड सुभान अल्लाह। बट अगर आपको पता है कि तनिष्क के डायमंड्स को, उनके जो है पीसेस को, डिजाइंस को देख के भी मेरे जो है जहन से यही सॉन्ग निकलता है कि सुभान अल्लाह, क्योंकि उनका हर डिजाइन यूनिक है, रेयर है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अलावा तनिष्क भी सेलिब्रेट कर रहा है फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, मतलब ऑफर्स ही ऑफर्स। आपको मिलेंगे 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, साथ ही साथ 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट। तो आप ये सीजन अपने टाइमलेस स्पार्कल को जो है उजागर कीजिए, ज्यादा शाइन लाइए अपने सीजन में, अपने डायमंड्स में, अपने अटायर में। आप तनिष्क जाइए, विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को। एंड हैविंग सेड दैट, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी, तो डू चेक देम आउट।

तो आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या मनी जो है खुशियां खरीद सकता है, कैन मनी बाई हैप्पीनेस, और इसके कुछ क्लोजिंग कमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसका जवाब है पार्शली, मनी कैन बाई कम्फर्ट, मनी कैन बाई सिक्योरिटी, एक्सपीरियंसेस एज वेल एज कन्वीनियंस एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन मनी ना अलोन कैनॉट बाई हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस का एक बड़ा पार्ट है रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पीस, पर्पस, टाइम और ग्रैटिट्यूड। आपके बैंक अकाउंट में कितने डॉलर्स हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके लाइफ अकाउंट में कितनी मेमोरीज हैं, कितने लोग हैं जिन्हें आप मिडनाइट कॉल कर सकते हो, कितनी बार आप जेन्युइनली किसी के साथ होते हुए खुश हो, कितनी जगह घूमी है, कितने ड्रीम्स परस्यू किए हैं और कितनी बार खुद को कहा है कि येस आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दी लाइफ दैट आई हैव। तो दोस्तों इसके साथ हम ये सेगमेंट यहीं क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, गिव अवेज हैं, तो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग टू फन एजियो रेडियो 104.9 FM।

यार मुझे भी कुछ अच्छा अच्छा सा फील होता है अगर मुझे टेस्टी स्पाइसी खाने को मिले, तो मैं तो तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जाने वाली हूँ, विच इज लोकेटेड इन गार्डलैंड, और ये है फ्लेवर डेस्टिनेशन सारे ही स्पाइस लवर्स के लिए। यहाँ आपको मिलेगा सिजलिंग तंदूरी प्लेटर, रिच करीज एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल पंच। स्मोकी तंदूरी कबाब मिल जाएगा आपको यहाँ पे, वेलवेटी करीज मिल जाएंगे आपको, और उसके साथ मिलेगा फ्रेश हॉट नान, और हर प्लेट ना आपको सेलिब्रेशन की तरह, फीस्ट की तरह फील होगी। तो डू गो टू तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट और अपने एक ऑर्डिनरी डे को सेलिब्रेशन में बदल दीजिए, फीस्ट में बदल दीजिए। वंस अगेन इज लोकेटेड इन गार्लैंड गाइस, एंड नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो एक लिसनर की चॉइस पे मैं बजा रही हूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
6: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
7: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
4: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
8: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
9: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
10: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
16: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं हीरो.
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
19: वही आवाज
17: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
19: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
20: तुमसे मिलके दिल का है.
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
19: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: देखिए, फन एशियर रेडियो पे तो हमेशा ही बहार आई रहती है, स्पेशली अगर आरजे सिमी हो आपके साथ, आप सुन रहे हैं फन एशियर रेडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया 104.9 एफएम। एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजे फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि सारे जो अनटैप्ड पोटेंशियल होते हैं ना इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं, तो ये सारे पोटेंशियल को वो अनलॉक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपके वेल्थ मैनेजमेंट को बेटर प्लान करने में आपकी मदद करते हैं। ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है और आपको फ्यूचर के लिए एकदम रेडी कर देंगे। गाइस, दिस इज एज ऑफ फिनटेक्स, तो आप इनको जरूर कॉल कीजिए एट 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज ajfintechs.com। और ना अब वक्त आ गया है कि गिव अवे राउंड किया जाए, लेकिन उसके पहले एक गाना हो जाए।
1: मधम मधम तेरी गीली हंसी,

तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सॉन्ग के बाद मैं करने वाली हूँ आज का गिव अवे राउंड, तो तैयार हो जाइए। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग, और ना इस बार कोई सवाल नहीं है, इसके बाद हम आपकी मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हफ्ता है रक्षाबंधन स्पेशल हमारा पूरा वीक, और हम यानी कि रेडियो फनेशा रेडियो और चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट डुरंट ने मिल के डिसाइड किया है कि आपके रक्षाबंधन को और स्पेशल बनाएंगे, ये डबल धमाका करेंगे, और इसके लिए हमें ना आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आपको बतानी है कि अपने सिबलिंग्स यानी आपके ब्रदर या फिर सिस्टर के साथ आपकी कोई अनफॉरगेटेबल मेमोरी, बहुत सारी मेमोरीज रहती है, लेकिन अभी आपके दिमाग में जो चल रहा होगी, यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई मस्ट शेयर, तो आपको हमें बताना है, और आप जीत सकते हैं चौकटाओ कैसीनो एंड रिसॉर्ट की तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइजेस। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको मुझे फोन करना है और अपनी स्टोरी शेयर करनी है हमारे साथ। एक कंडीशन है कि आप जो है 21 इयर्स या फिर आप उसके ऊपर होने चाहिए, और बट आप अपनी स्टोरी चाइल्डहुड की भी शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मुझे कॉल करके बताना है, हम आपको ऑन एयर भी लेंगे, मतलब सब लोग आपकी स्टोरी इंजॉय करेंगे। गाइज, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। नंबर है 972-235-5555।

0: हमारे साथ ऑन एयर हैं सुभाष जी. हाय सुभाष जी, आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए विथ ऑल आवर फ्रेंड्स.
1: Sure. So my name is Subhash Nair and I'm from Nikhilalam here in Dallas, Texas. So basically, ये तब की बात है जब मैं fifth grade में था. मेरे भाई seventh में, मेरे दूसरे भाई ninth में, and my sister was in 11th grade. So we were like 2 years apart. And हम लोग सब साथ में खेलते थे. लकोरिया हो गया, डबाई स्पाइस हो गया, गुली डंडा हो गया. हमारे पास इतने सारे गेम्स है, सर पर रंबा, डक इन द वाटर, क्वैक क्वैक क्वैक, बहुत सारे गेम्स है हमारे पास. तो हम लोग रोज सुबह आके खेलते थे और ये समर टाइम चल रहा था. तो क्या हुआ कि हम लोग सुबह सब गैदर हुए, हम लोग 12-15 लोग थे और हम लोग को क्रिकेट खेलना था. तो क्रिकेट के लिए बॉल नहीं था. फिर हम लोग ने बोला चलो सॉकर खेलते हैं. सॉकर के लिए जो बॉल था वो उसमें हवा नहीं था. फिर डब्बा स्पाइस खेलना था, डब्बा नहीं था. तो मतलब ऐसे हर गेम हम लोग सोच रहे थे और कुछ ना कुछ कमी था, तो हम लोग वो खेल नहीं पाए. सो अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं अभी खेले तो क्या खेले. तो तभी मुझे एक आइडिया सूझी. तो मैंने सजेस्ट किया सबको, मैंने बोला कि चलो हम लोग ऐसा दो टीम बनाते हैं और एक दूसरे को पत्थर मारते हैं. और वहां पे बहुत सारे पत्थर थे क्योंकि हमारी कंपनी क्वार्टर्स के अंदर इंडियन स्मेल्टिंग रिफाइनिंग कंपनी था, तो उनके अंदर मतलब कंस्ट्रक्शन चालू था.
0: हाँ जी, हाँ जी.
1: तो बहुत सारे पत्थर थे वहां पे. तो मैंने बोला कि चलो ये गेम खेलते हैं. तो सब एग्री कर ले, सबको इंटरेस्टिंग लगा, नया गेम तो चलो खेलते हैं करके. तो हम लोगों ने ऐसे दो टीम बनाए और हम लोग एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे और हम लोग डॉज कर रहे थे पत्थर को. तो क्या हुआ कि ये 10 बजे का टाइम था सुबह का, 9-10 बज गया था.

0: एग्री कर ले, सबको इंटरेस्टिंग लगा नया गेम, तो चलो खेलते हैं करके. तो हम लोग ऐसे दो टीम बनाए और हम लोग एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे और हम लोग डॉज कर रहे थे पत्थर को. तो क्या हुआ कि ये 10 बजे का टाइम था, सुबह का 9-10 बज गया था और मेरे डैडी हर दो घंटे बाद फैक्ट्री से घर पे आते थे चाय पीने के लिए. तो जैसे ही डैडी फैक्ट्री से निकले तो फैक्ट्री थोड़ा नीचे लो लेवल में था और वहां से स्टेयरकेस करके देन यू कम टू द क्वार्टर्स. तो जैसे ही डैडी चढ़ रहे थे स्टेयरकेस तो ऊपर से उन्होंने देखा पत्थर आते हुए, तो उन्होंने भी डॉज ही किया पत्थर को. और जैसे ही वो लेवल पे आए और उसने देखा कि यहाँ पे दो टीम लड़का लोग का बना हुआ है और यू नो दे आर थ्रोइंग स्टोन्स एट ईच अदर. और उस जमाने में मेरे डैडी लाइक अमरीश पुरी थे, यू नो मोगैम्बो काइंड ऑफ पर्सन. तो डरते थे. ही वाज अ टेरर, ही वाज अ टेरर इन आवर क्वार्टर. सो
1: फिर भी आप लोग इतनी शैतानी कर लेते थे, सोचिए.
0: ओ या मतलब इतना मस्ती था कि पूछो मत. फिर बाद में जैसी डैडी ने देखा जोर से चिल्लाया बंद करो, तो हमारे हाथ से सब पत्थर छूट गया, सब स्टैचू के पोजिशन में. फिर सबको बोला नील डाउन करने वहां पे. अच्छा मजे की बात ये थी कि सबका मतलब सबका बालकनी फेसिंग था उस ग्राउंड में. तो ये आवाज सुन के जितने भी माँ लोग हैं सब लोग बालकनी में आ गए और सोचे कि क्या आवाज है, किसका आवाज है, क्या हो रहा है करके. और सब लोग ने देखा कि सबके बच्चे लोग नीचे पड़े हुए हैं और नील डाउन कर रहे हुए हैं. और मेरे डैडी वहाँ वो शोले में जो डायलॉग होता है गब्बर का, कितने आदमी थे, वैसे स्टाइल में मेरे डैडी वहाँ चल रहे हैं. और मुझे बोला घर पे जाके चेन लेके आने के लिए. मैंने बोला डैडी जाने दो, जाने दो, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरा गलती है, मैंने सजेस्ट किया. बोला नहीं जाके चेन लेके आओ. मैं भागा घर पे एकदम डर के मारे और मैं जाके केन लेके आके दिया डैडी को. फिर भी देने के टाइम भी मैंने डैडी को बोला डैडी मत मारो मत मारो. डैडी सुनने को तैयार ही नहीं. डैडी बोला कि नील डाउन करो. और कोई नहीं,
1: आपकी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीकेंड जो है लेके आए हैं, रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट जो आपका हुआ. मैं आपसे डिटेल्स ले लेती हूँ, आप लाइन पे बने रहिए. थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर शेयरिंग. और मैं आपसे अभी आपकी डिटेल्स लूंगी एंड मीनवाइल अपने लिसनर्स के लिए अमेजिंग साउंड ट्रैक्स प्ले करती रहूंगी.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Beta, 95% aaye?
2: Haan, mummy.
1: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
3: Mera?
1: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
17: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

एक पुराना रिश्ता तो हमारा जो है अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन के साथ भी होता है, और हमने अपना गिव अवे राउंड कंप्लीट किया है। आज के हमारे चौकटाओ रक्षाबंधन स्पेशल गिव अवे के विनर हैं सुभाष, जिन्होंने अपनी स्टोरी ऑन एयर सुनाई थी जस्ट बिफोर द ब्रेक एंड दिस सॉन्ग। पर अगर आप ये गिव अवे नहीं जीत पाए हैं और आपको अभी चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट्स जाना है, वहां पे वीकेंड एंजॉय करना है विद योर सिबलिंग, तो आपके पास अभी भी मौका है। जी हाँ, आपने ना हमें 1 मिनट वॉइस नोट भेजना है ऑन व्हाट्सएप नंबर, मैं बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। इट इज 214-837-7147, इट्स 214-837-7147। और आपको भी ये गिव अवे मिल सकता है रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट डुरंड। और अगर आपको इस पे कुछ कॉन्टेस्ट के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पे भी जा सकते हैं, जहां सब कुछ मिल जाएगा। बस एक कंडीशन है कि आपको 21 साल से ऊपर का होना है, 21 ईयर्स और ओल्डर टू बी एबल टू पार्टिसिपेट। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी आपको चेक कर लेना चाहिए, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्टोरीज, क्योंकि यो यार भाई बहनों के साथ इतनी सारी स्टोरी होती है, क्रेजी स्टोरी होती है, और बनता है कि हम उसके जो है बाकी लोगों के साथ शेयर करें, उस पर हंसे आज याद करके।

क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर आपके साथ जो है फटाफट 5-10 मिनट में उनको जो भी समझ में आया आपको फटाफट चेकअप करते हैं, डायग्नोस करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लेके जो है बोलते हैं जाने के लिए? लेकिन है ना, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में ऐसा नहीं होता. आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलते हैं पूरे के पूरे 30 मिनट यानी कि आधे घंटे, ताकि आप अपनी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें, पूरा अपना जो है प्रॉब्लम्स का बैकग्राउंड क्या है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सारे शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि यू नो दिस माइट बी द करेक्ट रूट कॉज. अच्छा, अच्छे से डायग्नोसिस हो जाता है. द मोर यू टॉक टू योर डॉक्टर, द बेटर द हेल्थ केयर इट वुड बी. और अगर आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की सर्विसेज के बारे में जानना है कि वो और क्या ऑफर करते हैं, तो लेट मी टेल यू कि बहुत कुछ है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनुअल फिजिकल चेकअप से लेके एंग्जाइटी केयर अगर आपको चाहिए, या फिर फाइब्रो स्कैन भी होता है फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, और भी अगर किसी विटामिन डेफिशिएंसी टेस्टिंग वगैरह कराना है तो भी वो यहां पे अवेलेबल है एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. और अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 214-666-6259. आई विल रिपीट द नंबर फॉर यू, इट्स 214-666-6259.

नहीं, कुछ चीजें तो आपको कहना ही पड़ेगा क्योंकि आंखों से थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार डिटेल्स वगैरह लेने। जैसे कि अगर आपका सपना है एक ड्रीम होम को पाने का, तो ये तो आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ बताना ही पड़ेगा। लेकिन आप बताएंगे किसको? मैं बताती हूँ, आप बताएंगे ड्रीम होम मॉर्गेज को, क्योंकि वो 1998 से US में सारी फैमिलीज को मदद करते आ रहे हैं उनके होम ओनरशिप की जो ड्रीम है उसको रियलिटी में बदलने में। और ये ना ऑफर करते हैं पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशन, और प्रोसेस इनका काफी स्मूथ है, स्ट्रेस फ्री है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। इनके पास सारे के सारे US के 50 स्टेट में लाइसेंस भी है, तो जहां चाहिए वहां घर लीजिए। और इनकी एक्सपीरियंस टीम मेक श्योर करेगी कि आपको जो है एक राइट लोन ऑप्शन भी मिले, जो कि आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से फिजिबल हो। तो चाहे आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, या फिर रिफिनेंस कर रहे हैं, आप ड्रीम होम मॉर्गेज को संपर्क कर सकते हैं बाई कॉलिंग देम एट 972-245-5626, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाइए, विच इज ड्रीम होम मॉर्गेज .com।

देखिए ठीक है, ये सब तो तू तू है, वही दिल ने जिसे अपना कहा, लेकिन अगर कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है या फिर स्लिप या फॉल इंसिडेंट, तो मैं बताती हूँ कि आपको किसने किसको अपना कहना है. ऑफ कोर्स आफ्टर योर फैमिली मेंबर्स, आपको फोन करना है अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम को, क्योंकि ये मदद करेंगे आपको अपना केस लड़ने में, और तब तक आपसे पैसे नहीं लेंगे जब तक कि आप वो केस जीत नहीं जाते. ये इंश्योर करेंगे कि आपको अपना ड्यू कंपनसेशन जो भी आप डिजर्व करते हैं वो जरूर मिले, और इंश्योरेंस कंपनी वगैरह की भी हेडेक आपकी नहीं है, वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम को. और अगर आपको उनसे कंसल्टेशन लेना है जो कि है मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो आप उनको कॉल कीजिए एट 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomar.com.

देखिए आपकी और मेरी कहानी तो अब अगले वीकेंड रिज्यूम होगी, क्योंकि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, आरजे सिमी के जाने का वक्त हो गया है। लेकिन जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अनाउंसमेंट है, जो मैं करके जाना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि कुमार शानू कहाँ आने वाले हैं सितंबर 11th को? डैलस में। और कहाँ और तो और, प्लेनों में। एट द लोकेशन इज आई थिंक रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स, जो कि प्लेनों में लोकेटेड है। तो आप भी अगर 90s के म्यूजिक के शौकीन हैं, कुमार शानू के फैन हैं, तो यहाँ ज़रूर जाए, क्योंकि वो आइकॉनिक लव सॉन्ग्स जो कि 90s के लोगों को या फिर अभी भी उनके रीमेक्स बन रहे हैं, लेकिन आपको जो है ये लाइव कंसर्ट देखने को मिलेगा। कुमार शानू के साथ जुस्तजू बातें वगैरह करने के लिए भी मिल सकता है, ये सब कुछ अवेलेबल है। आपको अगर टिकट्स बुक करनी है तो आप जा सकते हैं eventbrite.com या फिर कॉल कीजिए 214-869-2668 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और कुमार सानू की बात हो रही है और ये गाना ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। सो लेट्स हियर द नेक्स्ट सॉन्ग, एंड विद दिस अर्जुन सिमी विल बी साइनिंग ऑफ।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: Mene pehne body shoes, gonna let my body loose. Only hai thode boots, there's body on my mind.
4: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
6: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
7: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
8: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
9: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
10: तारा वो तारा हर तारा.
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
13: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
14: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
13: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

दिस इज KZMP 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, एक से दो के बीच में साथ रहेगा म्यूजिकल साथ, बिल्कुल बहुत बहुत म्यूजिकल साथ होगा आपके साथ, जहाँ पर हम आपके लिए ज़्यादातर गैर फिल्मी गाने लाएंगे, वेब सीरीज से लेके प्राइवेट एल्बम्स से लेके कुछ सूफियाना गाने, गज़ल, जो भी आप सुनना चाहें लेकिन गैर फिल्मी। शुरुआत करूँगी बिल्कुल फिल्मी गाने के साथ और बहुत सारी बातें होती है साज और आवाज़ की, कलाकारों की। जी हाँ, कुछ नए कलाकारों की, कुछ हमारे एग्जिस्टिंग कलाकारों की, कुछ बहुत ही सफल कलाकारों की, कुछ ऐसे कलाकार जो सफल होना चाहते हैं इन द इंडस्ट्री, ऐसे कलाकारों की ये सारी बातें गाने रहेंगे आपके खिदमत में आपके साथ टिल 2 PM। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस म्यूजिकल सफर की आपके साथ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग डन बाय सचिन जिगर। जी हाँ, सचिन जिगर के जो संगीत में कुछ अलग होती है बातें, कुछ उनके कंपोजिशन में, उनकी धुनों में, इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी टिपिकल सॉन्ग्स, तो बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना, आपको सुनवाना। और ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे कुछ कलाकारों की, कुछ कला की, यहाँ पे टिल 2 PM।

सजन मैनू इश्क निभावा दे, सचिन संघवी और जिगर सरैया, जी हाँ उनके संगीत में सजा हुआ था ये गीत और लक्ष्य पे फिल्माया गया था। अब आप सोचते होंगे लक्ष्य कौन है भाई, तो ये कैसे कलाकार है जिनको आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा था एंड आफ्टर दैट ही केम इन चांद मेरा दिल। सो लक्ष्य जो थे वो कभी भी अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, नहीं वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, कि मुझे कभी एक्टिंग नहीं करनी थी। यू नो कैजुअली वो सिर्फ गए थे, एक रोडीज करके एक शो हुआ करता था ऑन MTV, इफ़ यू हैव सीन दैट एनी टाइम, वहाँ पर वो गए थे अपने दोस्त के साथ। देखिए तकदीर कहाँ से कहाँ ले जाती है, राइट? वो अपने दोस्त के साथ गए थे उनको कंपनी देने के लिए कि भाई उनको ऑडिशन देना है तो मैं भी चलता हूँ वहाँ पे। और वो रोडीज के जो प्रोड्यूसर थे उनकी नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने कहा कि भाई आप तो काफ़ी अच्छे गुड लुकिंग बंदे हो, आप क्यों TV पे ट्राई नहीं करते? उन्होंने कहा मुझे नहीं करना, यू नो आई एम नॉट रियली हियर टू बी एन एक्टर। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक शो बना रहा हूँ TV में जिसका नाम है पोरस, तो आप उस पर ट्राई कीजिएगा। एंड यू नो ही गॉट दैट रोल। सो TV पे वो बिफोर ही केम ऑन द वेब सीरीज वो TV पे उन्होंने एक शो किया था। उसके बाद ऑफकोर्स TV पे उनका बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी आपने देखा, एंड देन ही वॉज इन वन ऑफ द मूवीज बॉलीवुड में जिसका नाम था किल, उसमें भी वो थे। तो कभी कभी यू नो इफ़ यू आर मैंट टू बी समवेयर, इफ़ यू आर मैंट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, आप कितनी भी कोशिश करें, आपको लगता है कि अरे मुझे सिंगर नहीं बना रहे, मुझे एक्टर नहीं बनना, लेकिन देखिए ऊपर वाले की अगर मर्जी है, ऊपर वाला चाहता है कि आप किसी जगह पे हो जहां आपका मकाम है, तो बस बन ही जाते हो।

ये निशदिन सताए पिया। देखिए, ज़माना कितना भी आगे बढ़ जाए, कितने भी और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना आ जाए, एआई संगीत, एआई से वो ये, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ असली संगीत होता है, असली सुर होते हैं, सब तक की बात कर लीजिए। और इस गाने में आपने जो शहनाई की धुन सुनी बीच में, सच सच स्वीट मेलोडी, राइट? तो बस यही बात है कि कभी भी अच्छा संगीत कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन। आप कितने भी नए गाने सुन ले, आप कितने भी नए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन ब्लेंड में गाने सुन ले, लेकिन जहाँ जहाँ अच्छा संगीत होगा वो कुछ अलग ही बात होगी। और बस वहीं अच्छा संगीत लाने की मेरी यानी कि नीलम की कोशिश होती है यहाँ पे एवरी सैटरडे, जी हाँ, 12 से 3 के बीच में, एंड संडेज 2 बजे तक।

वो कल भी करीब थी, वो आज भी पास पास है। क्या बात है गुलजार साहब। जी हाँ, गुलजार साहब की बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत एंड किशोर कुमार की आवाज़ आपने सुनी थी इन द फिल्म खामोशी। लेकिन यही गीत आपने यहाँ पर सुना, ये बहुत ही खूबसूरत गीत था सौरेंद्र की आवाज़ में, सौरेंद्र एंड सौम्यजीत। और ये जो आवाज़ है मैंने आपको बहुत बहुत बार मेरे ही शो में मैंने आपको सुनवाई है। एंड दे डू कंडक्ट वर्ल्ड म्यूजिक डे कॉन्सर्ट एवरी ईयर इन कलकत्ता, जहाँ पर वो धुरंधर एक से बढ़कर एक महारथी सिंगर्स को, कंपोजर्स को इन्वाइट करते हैं। एंड देन दे डू गिव द ट्रिब्यूट टू दिस लेजेंडरी सिंगर्स, चाहे वो किशोर कुमार की बात हो, लता जी की बात हो, हमारे पुराने कंपोजर्स की बात हो। एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सर्ट एवरी ईयर दे प्रेजेंट दैट, जहाँ से वो ही गाने मैं आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ कभी कभार इन दिस शो। जी बिल्कुल, गाने पुराने होते हैं लेकिन एक नए अंदाज में, ऐसे बहुत सारे गाने मैं आपके लिए लाती हूँ। जहाँ अच्छा संगीत वहाँ बिल्कुल आप सुनेंगे हमारे साथ ऑन फनेशिया एवरी वीकेंड। कमर्शियल ब्रेक होगा लेकिन कहीं मत जाएगा, अभी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रस्तुति बाकी है वही आपके लिए। कुछ वेब सीरीज़ की बातें होगी, वेब सीरीज़ के गाने भी हैं आपके लिए, कुछ सज्जाद अली साहब की आवाज़ में हम सुनेंगे, लेकिन ऑल दैट आफ्टर द ब्रेक। जाते जाते चलिए आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का नंबर बता दूँ, 214-666-6259। कभी कभी जब डॉक्टर्स को मिलते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होती हमारी मुलाकात उनसे, तो अगर आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और आपको लगता है भाई 5 मिनट भी कोई मुलाकात होती है भाई डॉक्टर के साथ, तो सुकून से बैठकर आपके जितने भी कंसर्न हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, राइट। तो ये बात आपकी हो सकती है पैशन हेल्थ में, और उनका नंबर है 214-666-6259। ज़रूर कॉल कीजिएगा, चाहे आपके एनुअल हेल्थ केयर की बात हो, एंग्जाइटी केयर की बात हो, विटामिन डिफिशियंसी की बात हो, एक ही नाम है, दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। सारा कमर्शियल एनर्जी का भी बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, 8444282808। एंड यू कैन विजिट taraenergy.com इज द वेबसाइट, वंस अगेन इट इज taraenergy.com एंड द नंबर इज 8444282808। They are proudly serving Texas business since 2002. जी हाँ, आपने सही सुना, 2002 से है आपकी सेवा में, हमारी कम्युनिटी की सेवा में, एंड दैट इज तारा कमर्शियल एनर्जी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहुत सारे ढेर सारे आपके कॉल्स के लिए, प्यार के लिए, जो गाने आप हमारे पसंद करते हैं, हमारी पसंद को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही प्यार है जो हम साझा करते हैं। आपको भी संगीत से प्यार है, और ज़रूरी नहीं कि पुराने गाने हम आपके लिए, ऑफ़ कोर्स नए गाने ही

0: लाते। देखिए यहाँ पर रेट्रो तो गाने हम आपको सुनवाते नहीं है, तो जो नए गाने होते हैं, फिल्मी हो या गैर फिल्मी गाने होते हैं, कोशिश हमेशा यही होती है, एक कॉमन थीम यही होता है हमारे सेगमेंट में, मेरे सेगमेंट में एटलीस्ट, कि हम आपके लिए मेलोडियस गाने लाएं, ऐसे गाने, ऐसे सुरीली बातें हो, ऐसे सुरीली गाने हो, ताकि आपके वीकेंड की जो थकान है, आपके वीकेंड की ये जो धूप है, कड़ी धूप, गर्मी है, वो कोई भी मौसम हो, लेकिन आपके दिल के मौसम को हम कर देते हैं बरकरार। वेरी म्यूजिकल। तो बस यही म्यूजिकल जर्नी जारी रहेगी आपकी और हमारी टिल 2 PM एज यूजुअल। जी बिल्कुल, संडेज 12 से 2 के बीच में होता है हमारा साथ, जहां 1 बजे तक आपने मुझे गुजराती कार्यक्रम में सुना और 2 बजे तक यही गाने, यही नगमे तराने होते हैं गैर फिल्मी। एंड यस्टरडे यानी कि सैटरडे जो साथ होता है वो होता है 12 से 3 का, तो कहीं मत जाएगा, बी विथ अस।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं ही दो।
15: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभाल लेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

तो मेरा हो गया इतना ही काफ़ी है ना जी, बिल्कुल। और आपका और हमारा वक्त भी काफ़ी है ना, एक से दो के बीच में जो भी वक्त हो, लेकिन वो वक्त हो आपके साथ गुजरे हर पल हर लम्हे म्यूजिकल। यही है मेरी अमन्ना उम्मीद ऑन 104.9 एफएम फनेश्वर रेडियो। मैं हूँ नीलम आपके साथ। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम, प्यार भरा स्वागत। इस सेगमेंट में हम आपके लिए ज़्यादातर गाने प्रस्तुत करते हैं जो फिल्मी नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से लेके प्राइवेट एल्बम्स, वेब सीरीज से लेके पाकिस्तानी ड्रामास एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग गाने प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम आप ही के लिए। मुसाफिर कैफे से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत, काफ़ी है जी बिल्कुल। लेकिन कभी कभार हमें अगर बहुत अच्छी लग जाए कोई सीरीज वेब सीरीज, तो एक सीज़न काफ़ी नहीं होती, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लकी रहते हम, लाइट प्रोड्यूसर्स बनाए रहते हम भी लगे रहते। सो मैं दो सीज आपको सीरीज के लिए बताऊंगी जिसकी अगली सीजन आने वाली है, लेकिन कौन सी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार इस गाने के बाद।

तेरे जैसा हमको कोई मिला नहीं सज्जाद अली साहब, आपकी जैसी आवाज भी नहीं होगी। वेरी वेरी डिस्टिंक्ट वॉइस एंड टेक्सचर ऑफ सज्जाद अली जी, जिनको आपने सुना ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। सीजन्स की मैं बात कर रही थी कि देखिए, कभी कभार जब एक वेब सीरीज बहुत ही पॉपुलर बन जाती है तो उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, एंड यू नो द लाइन गोज ऑन। इसी तरह से कोहरा, इफ यू रिमेम्बर, जहाँ पर मोना सिंह, जी हाँ मोना सिंह थी, वो उनकी दूसरी सीजन आ रही है कोहरा की, और नेटफ्लिक्स पे है, जिसमें एक बार फिर से पंजाब की ही धुन में कुछ मर्डर केसेस को सॉल्व करेगी मोना सिंह, एंड दैट इज कोहरा सीजन 2। नाउ यू डू यू रिमेम्बर द रॉयल्स करके एक सीजन आई थी, ईशान खट्टर, यस ईशान खट्टर के साथ भूमि पेडनेकर। आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू कि आपको कितनी अच्छी लगी थी। मुझे ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की पैर देखकर लग रहा था कि किसी एंगल से किसी भी एंगल से दे वर नॉट रियली सुटेबल फॉर ईच अदर। ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों एज अ कपल, बट खैर वो अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी चॉइस। तो अब एक बार फिर से ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर स्टारर ये जो सीरीज है, मॉडर्न सीरीज रोमांटिक ड्रामा में कहूंगी, दैट इज द रॉयल्स, उसकी सीजन 2 आने वाली है अब। एंड यस, द सेम पेयर, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द पेयरिंग। मेरी राय कोई मायने नहीं रखती, आपकी राय भी मायने नहीं रखेगी। अगर प्रोड्यूसर्स को ये पेयर अच्छी लग रही है तो वही रखेंगे, एंड दैट इज ईशान खट्टर, जो इट्स अ ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। इफ यू हैव सीन हिम इन व्हाट वाज दैट मूवी, द क्लाउड्स, द क्लाउड समथिंग, यस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक्टर। एंड भूमि पेडनेकर, यू नो, उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, बट दोनों साथ में, पता नहीं, ये मेरी राय है। खैर, लेकिन एक बार फिर से दोनों साथ में होंगे इन द रॉयल सीजन 2।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: असीम मजहर की आवाज, मेरी जिंदगी है तू, ऑन 104.9 एफएम फर्नीशिया रेडियो। अच्छा, आपको तापसी पन्नू अच्छी लगती है? एज एन एक्टर से बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स ग्रेट एक्टर राइट, उनके अलग अलग मूवीज़ आपने देखी होगी, अलग अलग किरदार में उन्होंने अलग अलग रोल को जस्टिफाई किया है, अलग अलग किरदार को जस्टिफाई किया है। एंड टिपिकल कमर्शियल एक्ट्रेस नहीं है, आई वुडंट से कि वो बेड के पीछे इर्द गिर्द गा सकती है, शी हैज़ ऑलवेज डन अ वेरी रेवोल्यूशनरी रोल्स, उनके अच्छे अच्छे किरदार रहे अब तक। वेल, अब वो काम करेगी वेब सीरीज में, जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म पर वो नज़र आएगी और उनकी सीरीज का नाम होगा गांधारी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। नाउ आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज गोइंग टू बी अ माइथोलॉजिकल शो और इट इज़ जस्ट सम सॉर्ट ऑफ मेटाफोर काइंड ऑफ थिंग, राइट, कि गांधारी जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों के लिए, पति के लिए जो त्याग किए थे, सो गांधारी है इस शो का नाम, जिसमें है तापसी पन्नू एज अ लीड एक्टर। एंड समटाइम इन सेप्टेम्बर नेटफ्लिक्स पे ये शो रिलीज होने वाला है, एंड विथ तापसी पन्नू। सो पहली बार, आई बिलीव पहली बार तापसी पन्नू नजर आएगी ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म।

सिमरन चौधरी के साथ आदित्य रिखरी थे। जी हाँ, और अब जितने भी आदित्य रिखरी के फैंस होंगे उनको लगेगा कि भाई हमें क्यों सिमरन के साथ उनकी आवाज़ सुननी है, हमें उनकी आवाज़ अलग ही सुननी है, क्योंकि उनके जो गाने होते हैं वो मिलियन से कम तो उनके व्यूज़ होते ही नहीं।

आदि तरिखड़ी की आवाज़ में सुना आपने गीत. एंड यू नो वेन एवर आई प्ले सच सॉन्ग्स मीनिंग आदि तरिखड़ी के या नवजोत आहूजा, एंड देर आर सो मेनी न्यू सिंगर्स, न्यू नेम, सिमरन चौधरी, कभी कभी मुझे ये लगता है, एंड ऑफकोर्स नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द सिंगर्स, बहुत अच्छा गाते हैं और उनकी तरह से उनकी एक टैलेंट भी होगी, वरना ऐसे ही कोई थोड़े 200 मिलियन 100 मिलियन व्यूज़ होते हैं, राइट. बट खैर, यू नो आई ऑलवेज थिंक कि ये जो नए गाने होते हैं, इट इज़ लाइक अ टेम्पलेट. एक टेम्पलेट है उनके म्यूज़िक का भी, एक टेम्पलेट है बाकायदा उनके लिरिक्स का भी, एक बाकायदा टेम्पलेट है उनके गाने की जो स्टाइल है, इट इज़ ऑल्सो लाइक यू नो वेरी वेरी मोल्डेड, वही मोल्ड है उनका हर एक गाने में. हर एक सिंगर्स की मैं बात कर रही हूँ, नहीं सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सिंगर्स की नहीं. एंड समहाउ आई डू थिंक, दिस इज़ अगेन माई पर्सनल ओपिनियन, के देर आर नॉट एनी वर्सेट अलग. अगर देखिए आप श्रेया घोषाल की आवाज़ को सुन लीजिए, सोनू निगम को सुन लीजिए, इवन 70s 80s की मैं बात नहीं कर रही हूँ, 5-10 साल पीछे जाइए और थोड़ी से और सिंगर्स को याद कर लीजिए, दे वर एबल टू सिंग डिफरेंट जोनर सॉन्ग्स, डिफरेंट वर्सेटिलिटी उनमें नज़र आती थी, सुनते थे हम. खैर ये संगीत की बात है, लेकिन जहाँ जहाँ संगीत है, नया पुराना, मेलोडियस संगीत होगा, अच्छे गाने होंगे, बिल्कुल आप मेरे यानी कि नीलम के साथ सुनेंगे. मैं रहती हूँ आपके साथ हर वीकेंड में, जी हाँ, सैटरडेज 12 से 3 के बीच में, जहाँ पर हम आपके लिए थीम बेस्ड गाने गाती नहीं हूँ भाई, प्रस्तुत करती हूँ थीम बेस्ड गाने. 2 से 3 के बीच में कम्युनिटी शो, कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति होती है. एंड संडेज 12 से 1 के बीच में गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ. एंड राइट आफ्टर दैट ये गैर फिल्मी गाने, कलाकार, कलाकारों की बातें ऑन 104.9 FM फनेशिया एवरी वीकेंड. इसी गाने के साथ, इसी बातों के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आज्ञा अनुमति. सुनते रहिएगा आपका और हमारा फनेशिया रेडियो.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: जीनी हुकम मेरे आका,
4: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
4: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
7: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
8: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a four-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
14: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
13: Experience meditation, breathwork, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
15: All right, welcome back, Dallas. You are listening to 104.9 FM. This is your RJ for the next hour, Rhea. That's right, I have you from 2 p.m. to 3 p.m. You're listening to Fun Asia Radio. We have a lot of fun stuff planned today, including some fun announcements, giveaways, and of course, an amazing playlist. So let's sit back, relax, and enjoy the show.

नंदिनी नंदिनी नंदिनी समीर चाह रहा है। बाबा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी उठो, समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे।

0: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
1: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
2: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
3: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
15: My name is Ritika Anand, Sanyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
14: Experience meditation, breathwork, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants, book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
6: अरे वो केक आया क्या?
7: डीजे कौन हैंडल करेगा?
6: डेकोर वाले को कॉल किया.
7: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
8: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया.
7: ऑसम इवेंट्स?
8: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग.
7: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म.
8: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ.
9: कॉल नाउ एट 214-725-7466. दैट्स 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
10: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
11: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
10: Fikar not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. What would happen to your business if a key owner, partner or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
12: Floors clean.
13: Check.
12: Windows clean.
13: Check.
12: Kitchen clean.
13: Check.
12: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
14: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dry vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
17: वही आवाज
12: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
17: तुमसे मिलके दिल का है.
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

उम्मीद करती हूँ कि 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी भी बाहर की तरह आपकी जिंदगी में दाखिल हुई है. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिलवक स्टूडियो की घड़ी में 3:09 हुए हैं. दैट इज 9:03 ऑन दिस 23rd of August 2026. इट्स अ संडे आफ्टरनून एंड आई एम सो ग्लैड यू डिसाइडेड टू स्पेंड इट विद अस. जैसा कि आप जानते हैं, फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स वी बीन फोकसिंग ऑन नॉन स्टॉप 90s. और हर संडे को वी पिक वन ईयर एंड वी आर गोइंग क्रोनोलॉजिकली. सो आज बारी है 1996 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म की. तो फिर बात आती है राजा हिंदुस्तानी फिल्म की, जिसका का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में. ये गाना आमिर खान और करिश्मा कपूर पर पिक्चराइज किया गया था. कहा जाता है कि ये करिश्मा कपूर की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेसफुल हिट थी ये फिल्म. इनफैक्ट उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था अपने रोल के लिए, जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था इस फिल्म के लिए. राजा हिंदुस्तानी सिर्फ 1996 की ही नहीं बल्कि 1990s की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में शुमार की जाती है. राइट बिहाइंड हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड कुछ कुछ होता है. सो आज सिट बैक रिलैक्स, क्योंकि 1996 की तमाम हिट फिल्मों के गाने आपको सुनाए जाएंगे राइट हियर ऑन 104.9 FM. एंड बिफोर आई गेट इन टू दैट, रियली क्विकली वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज, आई नो यू बीन हियरिंग अबाउट द शार्क टॉ रक्षा बंधन कॉन्टेस्ट. वेल, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन. सो अगर आप सोच रहे थे कि आप भी कुछ भेजेंगे तो इंतजार मत करें, बिकॉज दिस रक्षा बंधन Fun Asia Radio एंड Shark Talk Casino एंड Resort in Durant wants to hear your most unforgettable memory with your brother or sister. सभी प्यार करते हैं अपने बहन भाइयों को, लेकिन उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसको रिकॉर्ड कीजिए ऑडियो को और व्हाट्सएप कर दीजिए टू 2148377147. ना सिर्फ डेली प्राइजेज हैं बल्कि ग्रैंड प्राइज भी है, विच इज़ एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट Shark Talk Casino एंड Resort in Durant. बाकी डिटेल्स आपको Fun Asia Radio के सोशल मीडिया पेजेस में मिल जाएंगी. ख्याल रखें, यू हैव टू बी एट लीस्ट 21 टू पार्टिसिपेट एंड देयर मे बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस. और अगर आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी भेज दिया, या आप ऑन एयर आकर कुछ कहना चाहते हैं इसी के रेफरेंस से, यू कैन डू दैट एंड विल टेक योर इन्फॉर्मेशन एंड विल मेक श्योर कि आपकी एंट्री शामिल हो जाए इस कॉन्टेस्ट में. All right, let's go ahead and move on to the second highest grossing film, aur us film ka gana.

और इस गाने में दिल लुभा रही है मनीषा कुराला, आवाज कविता कृष्णमूर्ति की थी। ये गाना फिल्म अग्नि साक्षी से लिया गया था, विच केम आउट इन 1996 और बनी ये उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म। अनलाइक मोस्ट अदर बॉलीवुड हिट्स, दिस वॉज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जिसे पार्थो घोष साहब ने डायरेक्ट किया था और लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। मनीषा के साथ इस फिल्म में थे जैकी श्रॉफ एंड नाना पाटेकर। इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, यू आर लिसनिंग टू नॉन स्टॉप 90s एंड टुडे वी आर प्लेइंग सॉन्ग्स फ्रॉम 1996।

इस वीडियो को देखकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि सनी देओल को डांस करना नहीं आता. करिश्मा कपूर ऑफ कोर्स ट्राइंग हर बेस्ट, बट दिस वाजंट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. दैट बीइंग सेड, जीत स्टिल वाज द थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म फॉर 1996. लव स्टोरी थी, थोड़ा एक्शन भी था, और इस फिल्म में ना सिर्फ करिश्मा कपूर और सनी देओल थे पर साथ में सलमान खान और अमरीश पुरी भी थे. फिल्म को बनाने में तकरीबन 5 करोड़ का खर्चा आया था, बट इट एक्चुअली पुल्ड इन ओवर 30 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड, एंड इसीलिए बनी ये 1996 की हिट फिल्मों में से एक. It's 20 minutes past 3. You're listening to Dil Se. Aaiye lekar chalte hain aapko agle hit gaane ki taraf.

कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए. दिस वॉज एक्चुअली एन आइटम सॉन्ग जो कि ममता कुलकर्णी पर पिक्चराइज किया गया था. आवाज थी अलका याग्निक की. ये गाना फिल्म घातक से लिया गया था, विच वॉज ए ट्रू एक्शन फिल्म जिसमें के सनी देओल थे. एंड अब आप देख लीजिए 1996 में उनकी दो फिल्में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर बनी. इस फिल्म में उनके साथ लीड थी मीनाक्षी शेषाद्री, साथ में थे डैनी डेंजोंगपा एंड अमरीश पुरी. आई होप यू एंजॉयड दिस सॉन्ग. एंड इस फिल्म को 42nd फिल्म फेयर अवार्ड में 3 अवार्ड मिले थे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अमरीश पुरी साहब को, बेस्ट स्क्रीन प्ले का भी और बेस्ट एडिटिंग का भी. वैसे नॉमिनेशंस भी थी डायरेक्टर की, एक्टर की, विलेन की, सभी थी, बट इट डिडंट मेक इट. हाउएवर दैट बीइंग सेड, इट स्टिल मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बॉक्स ऑफिस एंड डिड ग्रेट. आइए अब चलते हैं हम, आई बिलीव ये होगी हमारी 5th highest grossing film of 1996.

इतना मुझे पता है। कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी। ये गाना अक्षय कुमार और रवीना टंडन पर पिक्चराइज किया गया था। वैसे इस फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले किया था रेखा जी ने। इस फिल्म की खासियत सिर्फ यही नहीं कि ये पांचवी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी, बल्कि द फैक्ट कि इसमें फॉर्मर WWF के रेसलर ब्रायन एडम्स भी थे एंड ब्रायन ली एज द अंडरटेकर इन दिस फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी। एंड दिस मूवी ऑफ कोर्स वाज द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ द खिलाड़ी सीरीज, क्योंकि जब जब खिलाड़ी नाम से फिल्म बनी है उसमें खिलाड़ी हमेशा अक्षय कुमार ही रहे हैं।

0: Gold Exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
3: Plano Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
2: सच में? सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
9: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
11: स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. हमारा ये गाना चूंकि बीच में रुक गया था कमर्शियल ब्रेक की वजह से, वी विल कंटिन्यू. Taken from the film Sajan Chale Sasural.

दिल जाने जिगर तुझ पे वार दिया है, टेकन फ्रॉम द फिल्म साजन चले ससुराल। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये मस्त सा गाना। दिस फिल्म वॉज अ रोमांटिक कॉमेडी। ऑब्वियसली गोविंदा हो, करिश्मा हो और कॉमेडी ना हो, ये कैसे मुमकिन है। इस फिल्म में वैसे तबू भी थी और कादिर खान भी। एक्चुअली ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी, तेलुगु मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। इट वॉज कॉल्ड अल्लारी मोगुडू। ना ये मूवी बहुत अच्छी गई थी, लोगों ने पसंद की, तो डेविड धवन साहब ने इसको हिंदी में बना दिया और ये भी सुपर हिट गई। एटलीस्ट इट शोड इट फॉर 1996। इफ यू आर जस्ट ट्यूनिंग इन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड दिस इज नॉन स्टॉप 90s, जिसमें आज हम शोकेस कर रहे हैं 1996 में रिलीज होने वाली हिट फिल्मों के गाने।

जान फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप मन है उदास और अलका याग्निक की आवाज में. इट इज 39 मिनट्स पास्ट 3 ऑन दिस संडे आफ्टरनून. यू आर लिस्निंग टू नॉन स्टॉप 90s brought to you by Tanishq Jewelers. Well, right now they're having their Festival of Diamonds where you get to enjoy 25% off on diamond value and making charges plus 0% deduction on the exchange of old gold above 18 carat. So celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Aur unka store pata hai aapko kahan hai, Frisco mein hai. So very, very conveniently located. 1996 ki hit filmo mein se ek film thi Jaan, which did great at the box office. इस फिल्म में अजय देवगन के साथ थी ट्विंकल खन्ना, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और सुरेश ओबेरॉय. और इस फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी आनंद मिलंद साहब ने. आइए अब चलते हैं अगली हिट फिल्म के गाने की ओर.

दिल में कुछ होने लगा, होने देना। सुन रहे थे आप ये गाना 1996 में रिलीज हुई फिल्म आर्मी से लिया गया था ये गाना। इस फिल्म में थे मोनीश बहल, शाहरुख खान, श्रीदेवी, सुदेश बेरी, रोनित रॉय, हरीश और किरण कुमार एज वेल एज डैनी डेंजोंगपा। और ये फिल्म एक्चुअली एक पुरानी हिंदी मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर 1985 में रिलीज हुई थी फिल्म आंधी तूफान। सो दैट वाज प्रीटी मच द सेम स्टोरी जस्ट विद न्यू एक्टर्स आई गेस। यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्ले द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ताकि आप हर गाने को इंजॉय करें इन द नॉन स्टॉप 90s।

चांद सा चेहरा सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में. आप ये गाना टेकन फ्रॉम द 1996 की सेमी हिट फिल्म, आ सुपर हिट नहीं थी पर सेमी हिट थी, पर आई थिंक 1996 वाज अ ग्रेट ईयर फॉर सनी देओल एज वेल एज करिश्मा कपूर. इस फिल्म में उन दोनों के साथ रीना रॉय, सुरेश ओबेरॉय और मुनीश भट्ट भी थे, एज वेल एज फरीदा जलाल. लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग. जो अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो फिल्म दिल जले से लिया गया है. नाउ दिल जले वाज आल्सो वन ऑफ द मूवीज व्हिच केम आउट बैक इन 1996 और इसमें थे क्या नाम है अपना अजय देवगन एज वेल एज सोनाली बांद्रे एंड देर वर सम ग्रेट सॉन्ग्स आई बिलीव इन दिस मूवी. आई एम गोइंग टू प्ले दैट फॉर यू. देर वर कपल ऑफ गुड सॉन्ग्स. लेट्स सी इफ दिस वन इज गोइंग टू बी गुड.

टेकन फ्रॉम द फिल्म दिल जले, उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो अजय देवगन और सोनाली बेंद्री पर पिक्चराइज किया गया था. दिस वॉज अ रोमांटिक एक्शन फिल्म दैट डिड अ ग्रेट जॉब एट द बॉक्स ऑफिस. पर जो अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, पर्सनली मुझे ये गाना बहुत पसंद है एंड आई थिंक इट्स जस्ट amazing, not just the picturization, lekin just overall. I think it's an amazing song, great melody, and I know you're gonna like this too.

अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप 1996 में रिलीज हुई फिल्म कृष्णा से लिया गया ये गाना, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ थे सुनील शेट्टी। और इस गाने के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि इसमें करिश्मा कपूर ने तकरीबन 30 आउटफिट्स चेंज किए थे और हर बार नए मेकअप और नए हेयर स्टाइल के साथ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और अब चलते हैं इस हिट गाने की तरफ, फ्रॉम तेरे मेरे सपने, विच ऑल्सो केम आउट इन 1996।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे

कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म तेरे मेरे सपने, जो अरशद वारसी पर पिक्चराइज किया गया था। इस फिल्म को बनाने में अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी का हाथ था। दिस वाज अ रोमांटिक कॉमेडी दैट डिडंट मेक इट टू टॉप 10, बट इट वाज राइट देयर बिटवीन द टॉप 15, लाइक विद इन द टॉप 15 सॉन्ग्स। और ये अगली फिल्म, ये भी पहली आई गेस 15 फिल्मों में शामिल की जा सकती है। एंड आई एम रेफरिंग टू तक्षक। Actually, it wasn't wrong song, पर कोई बात नहीं, कभी कभी wrong song भी सुन लेते हैं। It was actually the movie was Rakshak, not Takshak. मैंने गाना Takshak का लगा दिया, पर गाना अच्छा है, so let's enjoy it.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer, zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB, here everything is better.
7: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Mere kal wale khane mein dosa. आने वाले खाने में डोसा।
11: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
12: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
11: Visit Fan Idli Veg Restaurant at the Highway 121. और कस्टर जंक्शन।
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
15: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
14: फूडिस्तान इन Aubrey, mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
16: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
17: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिलवक स्टूडियो की घड़ी में 4:05 हुए हैं. दैट्स 4:05 ऑन दिस 23rd of August 2026. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल वेयर एवर इट इज दैट यू आर. कमर्शियल ब्रेक से पहले तक वी वर डूइंग आवर सेगमेंट नॉन स्टॉप 90s, जिसमें आज हमने आपको 1996 में रिलीज हुई हिट फिल्मों के गाने सुनवाए. आई होप यू एंजॉयड आवर सिलेक्शन. वेल नाउ इट्स टाइम फॉर द सेगमेंट शब्द. शब्द सेगमेंट में हम कोई एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं और उसी वर्ड को लेकर आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने, कुछ नए कुछ पुराने. शुरुआत की जाती है पुराने गानों के साथ एंड क्रोनोलॉजिकली हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. सो आज भी 50s के गाने से शुरुआत की जाएगी. सो द फन पार्ट अबाउट दिस सेगमेंट इज यू गेट टू हियर अ वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट एरा, फ्रॉम डिफरेंट डेकेड्स, एंड दे ऑल हैव दैट वन कॉमन वर्ड. और इसमें आपकी पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये पहला गाना सुनकर मैं चाहूँगी कि आप गेस करने की कोशिश करें कि आज का वर्ड क्या है. एंड ऑफकोर्स आपकी मेहनत पर आपको इनाम तो ज़रूर मिलेगा, इनाम हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन पहले आपको गाना सुनकर गेस तो करना है ना कि आज का वर्ड क्या है, आज का लफ्ज़ क्या है, आज का शब्द क्या है. इससे पहले कि हम गाना प्ले करें, रियली क्विकली अ शाउट आउट टू अटर्नी ओमार ख्वाजा, बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर टू फाइट योर केस व्हेन यू गेट इनटू अ कार ट्रक एक्सीडेंट और इफ देयर इज अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, व्हाटएवर इट मे बी, ही नोज हाउ टू गेट यू द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, बिकॉज दे हैव गॉट द एक्सपर्टीज टू डील विद इंश्योरेंस कंपनीज, जिनका काम सिर्फ ये कि आपको कम से कम कॉम्पनसेशन दी जाए. सो वट यू नीड टू डू इज, गॉड फॉरबिड इफ यू आर इन सच अ सिचुएशन, गिव हिम अ कॉल. उनकी कंसल्टेशन भी फ्री होती है और वो फीस भी चार्ज नहीं करते टिल यू विन. नाउ आई नो इट्स नॉट लाइक समथिंग हैज हैपेंड टू यू राइट नाउ, पर आप ऐसा करें ना, नंबर सेव कर लें जस्ट इन केस, यू नेवर नो. 4693005046 or you can visit attorneyomar.com. Alright guys, are you ready? मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ और अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि आज का वर्ड क्या है ये गाना सुन के, तो आप कॉल कीजिए 9722355555. That's 9722355555. कोई कॉलर नंबर नहीं है और आप एक से ज्यादा बार कॉल कर सकते हैं. लेट्स से आपने एक बार आपको लगा वर्ड है दिल एंड मैंने कहा नहीं वर्ड दिल नहीं है, आप फिर से कॉल करके बोले प्यार, वट एवर यू नो बेस्ड ऑन द सॉन्ग. सो आप कॉल मल्टीपल बार कर सकते हैं टिल यू फिगर्ड आउट के वर्ड क्या है. और वर्ड हमेशा गाने के मुखड़े में होता है, यानी कि पहली 2-3 लाइनों में ही वर्ड आपको मिल जाएगा और आज के बाकी तमाम गाने इसी वर्ड से रिलेटेड होंगे.

आज मैं आजाद हूँ दुनिया के जगन में। नरगिस जी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना लता जी की आवाज में सुन रहे थे आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस आरती फॉर बीइंग द विनर। बिल्कुल सही गेस किया आपने। आज कॉन्सेप्ट है उड़ान का, उड़ने से रिलेटेड गाने हम आपको आज सुनवाएंगे। एंड आई प्रॉमिस यू आर गोना लव माय सिलेक्शन।

दिलीप कुमार और वैजयंती माला पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे आप मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज में. होप यू गाइस एंजॉयड इट. इट्स 14 मिनट्स पास्ट 4 और रुत प्यार की जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा रुत यानी के मौसम, तो क्यों ना आपको मौसम का हाल बताऊं. बिल्कुल हमारे यहाँ तो कोई प्यार व्यार का मौसम नहीं हो रहा है, बहुत ही गर्मा गर्म मौसम हो रहा है. ऐसा मौसम हो रहा है कि अगर आप अंडा रोड पे डालेंगे ना तो अंडा पक जाएगा, फ्राई हो जाएगा, पोच मतलब तेल की तो जरूरत ही नहीं होगी, ऐसे ही पक जाएगा. बिकॉज इट्स 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. इनफैक्ट सुन के ही गर्मी लग रही है मुझे. टुडेज हाई इज 104 एंड राइट नाउ एट 415 वी आर एट द हाईएस्ट टेम्परेचर राइट नाउ 104. टुडेज लो वाज 80 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड आई एम सो सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन कल भी ऐसा ही मौसम रहेगा. 3 डिजिट टेम्परेचर्स वी आर एक्सपेक्टिंग, 105 degrees Fahrenheit for a high and 86 degrees for a low. That's what you get when you live in Texas. अब इस वक्त मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, बस आपको ठंडे मीठे गाने ही सुना सकती हूँ. Thank you for listening to Dil Se and I hope you're enjoying the Shabd segment जिसमें आज का word है, concept है, उड़ना, उड़ती, उड़े, वगैरह वगैरह.

1967 में रिलीज हुई फिल्म बहारों के सपने से लिया गया ये गाना राजेश खन्ना और आशा पारेख पर पिक्चराइज किया गया था। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की। इस वक्त आप सुन रहे हैं ये तमाम गाने इसलिए बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर शब्द सेगमेंट, जिसमें आज का वर्ड कॉन्सेप्ट है उड़ना, उड़ान, उड़िए, उड़ती, उड़ता, एटसेट्रा। सो आइए अब 60s से चलते हैं 70s की तरफ और सुनते हैं किशोर जी का गाया हुआ ये गीत।

and Cinny. What a beautiful song. I hope you guys enjoyed it. Thank you so much for tuning in to 104.9 FM. I'm your host, Amreen Hasnath, and this part of our show brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms in the US. Financial services offer karte hain wo har tarah ki individuals ke liye bhi aur businesses ke liye bhi. आप मुकम्मल तौर पर उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं. गिव देम अ कॉल एट 469-942-9888 और विजिट agfintechs.com. सो आज कॉन्सेप्ट है उड़ान का शब्द सेगमेंट में, जिसमें यानी कि हम ऐसे गाने प्ले कर रहे हैं जिसमें उड़ना, उड़ती, उड़ी वगैरह वगैरह टाइप के यू नो वर्ड्स हैं इन दोज सॉन्ग्स. अब जैसे कि आप जानते हैं, आई ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द ओल्डीज एंड देन मूव फॉरवर्ड. सो मैंने आपको 50s के गाने सुनाए, 60s के सुनाए एंड 70s के. एंड नाउ आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च राइट टू फाइंड द राइट सॉन्ग्स. एंड सरप्राइजिंगली 80s में कोई ऐसा गाना नहीं था जिसमें ये वर्ड यूज हुआ हो एज एन उड़ने से रिलेटेड. बट I did find a song which is similar. Isme udne ka koi taluk nahi hai, but the sound is there. So that word is there. So I thought, you know, why not? So let's enjoy this track from a hit 1982 film, Vidhata.

और आइए अब जंप लगाते हैं 82 से 94 की इस फिल्म की तरफ. टेकन फ्रॉम द फिल्म क्रांति.

0: time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds with up to 25% off on diamond value and making charges. Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: Sign milna mushkil hai, lekin Plano mein zabardast tha na, uska signature mil gaya. Signature cuisine in Plano. Famous nihari, sizzling grills, crispy fried chicken or mouth-watering parhatha rolls. Aur koi bhi celebration ho, to banquet services bhi. Located at Spring Creek and Alma, East Plano. Visit signaturecuisine.net. Signature cuisine. Har taste par apna signature.
3: Ek aur laddu le lo.
4: Todi aur biryani.
3: Are America jaake thodi milega.
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: अजी सुनते हो?
12: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
6: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

उड़ते बादल से पूछो अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो कि 1993 में रिलीज हुई फिल्म संग्राम से लिया गया था, अजय देवगन और आयशा झुलका पर पिक्चराइज किया गया था। वेलकम बैक टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, Bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात। उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं फुल टाइम रेडियो छोड़कर कहाँ चली गई। सो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो दैट आई एम नाउ मैनेजिंग माई फुल सर्विस इवेंट कोऑर्डिनेशन कंपनी अंडर द नेम ऑसम इवेंट्स। सो अगर आपका कोई इवेंट आने वाला है, जैसे कि कोई शादी ब्याह का मौका हो या कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो या कोई कॉन्सर्ट हो, आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ इवेंट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उसमें वेंडर नेगोशिएशन में आपको हेल्प चाहिए हो या इवेंट प्लानिंग में आपको हेल्प चाहिए हो, और मे बी यू हैव डन मोस्ट ऑफ द वर्क एंड यू जस्ट वॉन्ट समवन टू हेल्प यू ऑन द एक्चुअल डे ऑफ द इवेंट, I can help you with that as well, and I can work with any kind of budget. So don't think just because I'm on the radio, aap mujhe ya meri services ko afford nahi kar payenge. That is not true. And agar aur kuch nahi, you just need a professional MC for your event, I would be happy to be part of yours. All you gotta do is give me a call at 214-725-7466. That's 214-725-7466. शब्द सेगमेंट में आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वर्ड इसलिए नहीं कह रही बिकॉज इससे मिलते जुलते काफी सारे वर्ड्स हैं, सो उड़ान कॉन्सेप्ट है। अब कोई भी ऐसा गाना जिसमें वर्ड उड़ना, उड़ी, उड़ती, उड़ता वगैरह वगैरह शामिल है। तो आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ। वी स्टार्टेड विद द ओल्डीज एंड नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। दिस इज फ्रॉम 2000।

मेरी चुनर उड़ सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये बहुत ही मीठा सा सुरीला सा गीत। आइए चलते हैं अब इस अगले सुपरहिट गाने की तरफ। आवाजें अलका याग्निक, उदित नारायण एंड द मूवी गदर।

0: कर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
1: शब्द सेगमेंट मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें यू गेट टू हियर अ वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग, एज लॉन्ग एज दे फॉलो दैट कॉन्सेप्ट के उसमें वो वर्ड होना चाहिए। अब ये गाना फिल्म गदर का था, अब आइए सुनते हैं अगला गाना फ्रॉम द फिल्म साथिया।

अदनान समी खान की आवाज में सुन रहे थे सातिया फिल्म से लिया गया ये गाना. Those of you just tuning in, wishing you all a very good evening. This is Amreen Hasnat. और शब्द के सेगमेंट में आज हम वर्ड जो हमारा है which actually is a word concept, उड़ान, उड़ना, उड़ती, उड़ी वगैरह वगैरह.

लाल दुपट्टा टेकन फ्रॉम द फिल्म मुझसे शादी करोगी, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में था ये गाना। प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान और अक्षय कुमार पर पिक्चराइज किया गया था। सुन रहे हैं आप शब्द का सेगमेंट और आज है कॉन्सेप्ट, वर्ड की जगह कॉन्सेप्ट, बिकॉज देर आर मेनी डिफरेंट वेज दैट दिस वर्ड कैन बी सेड, उड़ना, उड़ी, उड़ता वगैरह वगैरह। दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय PMJ Jewels। ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इट इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी स्टोर, सर्विंग इंडिया फॉर ओवर 60 इयर्स। एंड गेस व्हाट, नाउ दे हैव गॉट ए शोरूम राइट हियर इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट। सो अब चाहे आपने गोल्ड की ज्वेलरी लेनी हो या डायमंड की या ब्राइडल कलेक्शन की हो तलाश, यू विल फाइंड इट ऑल एट PMJ Jewels। ऑलराइट, शब्द सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं इस अगले गाने की तरफ। एज यू नोटिस, वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम।

ऐश्वर्या राय पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म गुजारिश से लिया गया था एंड आवाज थी सुनीति चौहान की. आई डिड हैव अ कपल मोर सॉन्ग्स लेकिन सेगमेंट का वक्त हो गया है खत्म. सो लेकर चलते हैं आपको आखिरी गाने की तरफ. दिस वाज आल्सो अ रिक्वेस्ट. आई होप यू विल एंजॉय एंड आई होप कि आज का शब्द सेगमेंट आप सभी ने एंजॉय किया. थैंक यू सो मच. वो कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
8: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
9: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
10: तारा वो तारा हर तारा.
11: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
14: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
15: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
14: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
16: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7747 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
13: चॉक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
17: Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. I'm your host, Amreen Hasnath. I'll be with you till 6 p.m. Today is the 23rd of August, 2026, and it's a Sunday evening. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे. वेल, आज का हमारा पहला सेगमेंट था नॉन स्टॉप 90s. फिर हमने आपको एंटरटेन किया शब्द के सेगमेंट के साथ. और अब जो सेगमेंट हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है क्या बात क्या बात क्या बात. आप सुनेंगे सेगमेंट तो खुद ही समझ जाएंगे कि इस सेगमेंट की क्या खासियत है. एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. आपने ये भी नोट किया होगा कि आई लाइक टू डू थिंग्स क्रोनोलॉजिकली, यानी कि वक्त के साथ. सो हमेशा मैं ओल्डीज से शुरू करती हूँ और फिर आज के डेकेड पर पहुंच जाती हूँ. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू विद दिस सेगमेंट एज वेल, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय वैनेसा इवेंट्स. वेल, क्या है वैनेसा इवेंट्स? इट्स एन इवेंट कोऑर्डिनेशन कंपनी दैट कैन हेल्प यू विद योर वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउसवार्मिंग या कोई भी सेलिब्रेशन. तमाम वेंडर्स का टेक केयर करते हैं, वो चाहे डेकोर हो या वेन्यू, लोकेशन, केटरिंग, जो भी है. वैनेसा इवेंट्स विल डू इट ऑल. इन फैक्ट दे डू केटरिंग एक्सक्लूसिवली थ्रू रेनाउंड बसेरा ग्रैंड. सो गो अहेड, गिव देम अ कॉल 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स आर योर सेलिब्रेशन पार्टनर. और अब शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट क्या बात क्या बात क्या बात.
18: कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी. मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका. और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं. न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग. भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर. मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है.

0: What a beautiful song, Mukesh. और लता जी की आवाज में कभी कभी फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप, और उससे पहले सुना आपने डायलॉग अमिताभ बच्चन की आवाज में. एंड दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन आवर सेगमेंट क्या बात क्या बात क्या बात.
1: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी.
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी.
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है.
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे. कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी. तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई. ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी. लो

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: फिल्म आंधी से लिया गया, ये गाना सुन रहे थे आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, और साथ साथ आपने संजीव कुमार की आवाज़ भी ज़रूर सुनी होगी। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग टुडे इन आवर सेगमेंट क्या बात क्या बात। हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी डायलॉग और साथ ही उन्हीं फिल्मों के गाने।
1: मेरे ख्यालों

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: What a beautiful song taken from the film Silsila. Kishore Kumar, Lata Mangeshkar ki awaazein aur ye gana picturize kiya gaya tha Amitabh Bachchan aur Rekha ji par. And usse pehle aapne dialogue suna Amitabh Bachchan ki awaaz mein. And that's exactly what we're doing in our segment. Kya baat, kya baat, kya baat.
1: अरे कहा था ना फिर मिलेंगे मिल गए ना
2: बैठो
1: अरे तुम्हें बीच में तुम्हारी शादी होगी अभी कैसी है
2: बहुत अच्छी है
1: जूनियर सिंगर
2: अभी तक दो ही हैं
1: क्या यार तीन साल शादी के हो गए एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके अच्छा अच्छा तुम त्रिवेदी को कंसल्ट करो
2: अरे हाँ त्रिवेदी का क्या हाल है
1: हाल क्या वही फैमिली प्लानिंग दो या तीन
2: बस और उसके अपने बच्चे
1: अपने बच्चे दो और तीन यानी कि पांच बस
2: पांच अरे हाँ अनंत इनसे मिलो ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी
3: अरे बाबू मोशाय लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना
2: त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया सुना है बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर अब क्या हाल है
4: लेकिन आनंद तुम तो कल आने वाले थे
2: अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त जब मैं पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पैदा होगा मैं 20 को आटप का अगर आप किसी डॉक्टर ने मेरे मरने की तारीख लिख दी तो देख लेना मैं उससे पहले खिसक जाऊंगा अरे हाँ मेरे दोस्त तुम्हारे ऑफिस में मैंने अपनी जायदाद रखी है एक सूटकेस और एक टेप रिकॉर्डर
5: बोरिया ले आओ बिस्तरा नहीं ला
2: फिक्र न करो तुम्हारा बिस्तर ऊपर के केबिन में लगाया है तुम यही रहोगे तुम्हारी एक्सरे प्लेट में दिखा रहा था डॉक्टर बैनर्जी को
4: अरे वाह यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है
5: ए बाबू मशाय क्या मिला वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा

0: स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का एक बार फिर. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और आपको सुनवा रही हूँ खूबसूरत गाने साथ साथ डायलॉग इन आवर सेगमेंट क्या बात क्या बात क्या बात.
1: नाराज हो मुझसे?
2: नहीं तो
1: फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती?
2: बात तो कर रही हूँ.
1: तीन दिन से ना ही तुम्हारा मैंने चेहरा देखा है और ना ही तुम्हारी आवाज सुनी है.
2: वो मैं बहुत बिजी थी इसलिए.
1: मैंने हजार बार तुमको फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठाती?
2: वो बहुत दिनों से फोन बंद है.
1: क्या परेशानी? मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूं कि परेशानी क्या है.
2: कोई परेशानी नहीं है.
1: परेशानी है, बहुत परेशानी है. परेशानी यह है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से कह नहीं पा रहे. मैं आज यहां पर यही कहने आया हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो. बस एक बार कह दो.

0: और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। बस एक बार कह दो, फिर देखो कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा।
1: मैं तुमसे प्यार नहीं करती।
0: झूठ बोलती हो तुम।
1: मैं झूठ नहीं बोलती।
0: तुम झूठ नहीं बोलती तो फिर मेरी आंखों में देखो और कह दो कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
1: नहीं बने हैं।
0: कह दो कि जब मैं तुमसे दूर जाता हूं तो मुझे पलट कर नहीं देखती।
1: नहीं देखती।
0: कह दो कि जब मैं तुम्हें छूता तुम्हें कुछ नहीं होता।
1: नहीं होता।

0: time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession. Floors clean.
1: Check.
0: Windows clean.
1: Check.
0: Kitchen clean.
1: Check.
0: Air ducts clean.
1: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
2: Bilkul, jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dry rent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
2: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
5: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
4: Experience meditation, breathwork, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
6: Welcome back to 104.9 FM Fanisha Radio, bringing the community together. I'm your host Amreen Hasnath and you're listening to our special dialogue segment Kya Baat, Kya Baat, Kya Baat, jisme pehle sunate hum aapko dialogue aur phir usi film ka gana. Enjoy.
7: तुम्हें हवा का झोंका कहूं कि वक्त की आंसू, दिल की धड़कन कहूं कि सांसों की खुशबू, तुम्हें याद करता हूं तो फूल खिल जाते हैं, सुबह होती है तो लगता है तुम अपनी जुल्फें शबनम में भिगो रही हो और मैं तुम्हारी आंखों को चूम रहा, सुनहरी धूप में लगता है जैसे चांदनी जमीन पे उतर आई है, शाम का ढलता सूरज तुम्हें चंपई रंग के फूल पहना रहा और तुम्हारी खुशबू से मेरा बदन महक रहा, जब रात अपना आंचल फैलाती है तुम्हारी कसम तुम बहुत याद आती हो, पूनम का चांद अपनी गर्दिश भूलकर ठहरा हुआ तुम्हारा रूप देख रहा है, मैं आंखें बंद कर लेता हूं और चांदनी मेरे दिल में उतर आती है, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा रोहित.

बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के

0: What a fun song, चांदनी फिल्म से लिया गया ये गाना ज्वाली मुखर्जी की आवाज में सुन रहे थे आप. और ये गाना ऋषि कपूर और श्रीदेवी पर पिक्चराइज किया गया था. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जो सिर्फ आपके साथ 5 मिनट नहीं बल्कि पूरा आधा घंटा बिताते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड वॉट एवर योर कंसर्न इज, यानी कि आपकी हेल्थ उनकी प्रायोरिटी है. अब वो चाहे आपका एनुअल फिजिकल हो, एंजाइटी केयर हो, अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हो, कोई टेस्टिंग करवानी हो, जो भी है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर विल डू इट ऑल फॉर यू. आप आज ही अपॉइंटमेंट कीजिए 214-666-6251. दैट्स पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. और आइए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको ना सिर्फ फिल्म के डायलॉग सुनवा रहे हैं बल्कि साथ उसी फिल्म का गाना भी.
1: वाह कृष्ण प्रसाद, वाह वाह वाह वाह. आज मुझे पहली मरतबा पता चला कि इतने बड़े महल में रहने वाला शख्स इतना छोटा भी हो सकता है. अरे जिस मोहब्बत को तो अपनी मोहब्बत के बल से हासिल ना कर सका, उस मोहब्बत को अपनी कायरता छल कपट से हासिल करना चाहता है. आज मुझे पता चला कि तेरे इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे एक शैतान एक भेड़िया रहता है.
2: मास्टर
1: चिल्ला मत, तू मोहब्बत में मीठा जरूर है मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू. बहुत ऊंचा फलसफा है और मैं यहाँ तेरी शरारतों को रफू करने आया था. तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं जा रहा हूं.
2: अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा. मास्टर तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं.

चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।

0: Hey, Sid. क्या समझे हम? तू कह रहा है कि तुझे एक ऐसी औरत से प्यार हो गया है जो तुझसे 10-15 साल बड़ी है, जिसकी एक बेटी है, जिसका एक पति था. तू खुद हमसे कह चुका है कि she's got a drinking problem. क्या समझे हम?
1: यही कि ये सब जानते हुए भी मैं उसे प्यार करता हूँ.
2: मगर सिड, जरा सोच, ये प्यार नहीं, पागलपन है.
1: नहीं, ये प्यार ही है. मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बन जाए या मुझसे शादी करे. मैं ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखता. और अगर वो मुझसे प्यार ना भी करे तो ठीक है.
0: अच्छा, अच्छा. समझ गया, समझ गया. याद है समीर, मेरी शुरुआत भी ऐसी हुई थी.
2: शुरुआत?
0: ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई इतराज नहीं. वैसे भी तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी. एक्सपीरियंस्ड है, अकेली रहती है, तेरा रोज का आना जाना है. समीर, देख और कुछ सीख. मान गए सिड, तेरी चॉइस तो बिल्कुल.
2: तेरी सोच कितनी घटिया है. मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं इस औरत से प्यार करता हूं, तूने इस बात को एक गंदा मजाक बना दिया. ग्रो अप आकाश. ये जरूरी नहीं कि हमें एक दूसरे की हर बात सही लगे, लेकिन हर दोस्ती में एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए. आज तूने वो हद पार कर दी.

0: कैसे हैं गोपाल सर?
1: कौन हो तुम?
0: मैं सूरज सर, आपने मुझे पहचाना
1: नहीं? नहीं, कौन हो तुम?
0: क्या? कोई भी नहीं, लेकिन आपने राधा के साथ ऐसा क्यों किया?
1: यही मुझसे ये पूछने वाले कौन हो तुम?
0: सर आपके बाद एक मैं ही तो जो राधा के बारे में पूछ सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ। आप मुझे बताइए ना, उसे क्या गलती हुई?
1: गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है।
0: मेरी? क्या पागलों से बात कर रहे हैं?
1: मैं पागल हूँ?
0: सर बेवकूफी की बात
1: है। बेवकूफ हूँ मैं? हाँ, है कौन तू मेरी बीवी का? हाँ, क्या लगता है तू? उसका बड़ा भाई है, उसका उसका छोटा भाई है, चचेरा भाई है, मामा है, ताया, क्या है तू? क्या रिश्ता कहते हैं मेरी बीवी के साथ?
0: हाँ, दुनिया में सिर्फ यही रिश्ते हैं।
1: हाँ, यही रिश्ता है ना, और क्या रिश्ता है? पड़ोसी है ना, यू मुंह उठाकर मेरे घर के अंदर क्यों घुसा चाहता है तू? बोल, तुझे नहीं पता मुझे नहीं पसंद कि तू मेरे घर के अंदर आए? हाँ, एक किसी गैर की बीवी को दिन में कितनी बार फोन करेगा तू? 4 बार 8 बार 10 बार? मालूम है कितना दुख होता है मुझको? मेरे ही सामने, मेरे ही घर में मेरी बीवी से कहता है तुझको एक बच्चा चाहिए, तेरे लिए? यू आर अ क्रिमिनल।
0: ठीक है, मैं क्रिमिनल हूं।
1: हाँ,
0: लेकिन तुम क्या हो? तुम तो उसके हस्बैंड हो ना, पति हो ना। वो तुम्हारे से सोती है, तुम्हारे साथ उठती है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। नहीं है मुझे उस पर भरोसा। वो मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी तारीफ करती है। मैं तो सिर्फ नाम का पति।
0: अरे
1: शादी तो तुम्हारी होनी चाहिए उसकी।
0: बहुत सुनी तुम्हारी बकवास, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। तुम्हें कॉम्प्लेक्स है, तुम छिछोरा हो।
1: मैं छिछोरा हूं?
0: कॉम्प्लेक्स है तू?
1: मैं छिछोरा हूं?
0: छिछोरा है तू?
1: छिछोरा हूं मैं? हां, रुक एक मिनट रुक।

0: सुन रहे थे आप ये गाना और डायलॉग फ्रॉम द फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग आवर सेगमेंट क्या बात क्या बात क्या बात, जिसमें हम बातचीत भी सुनवा रहे हैं, एज इन फिल्मी डायलॉग भी और उन फिल्मों के गाने भी। आई होप यू हैव एंजॉयड आवर सेगमेंट सो फार।
1: कहाँ गई थी? ये सब खुला छोड़कर।
2: कुछ चाहिए आपको?
1: कितने की है?
2: 250 रुपए।
1: पुलिस वाले को लूट रही है।
2: छुट्टी नहीं है वापस देने के लिए।
1: कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे।

0: भी चाहिए था। दो क्यों चिपका रही हो?
1: उधार नहीं रखते हम, अगली बार वापस करके पैसे ले लीजिएगा।
0: दो। चलें, चलते हैं। एक मिनट बात करने का 500 रुपए। 500 और गए, गिर गए।

0: इन दो मटकियों के लिए।
1: गलती हुई आपसे, गलती का दाम नहीं लेती मैं।
0: दाम दे रहे हैं दान नहीं, प्यार से दे रहे रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।
1: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता।

मेरे दिल। और इसी आखिरी गाने के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत। आई होप यू एंजॉय टुडेज सेगमेंट ऑफ दिल से, एंड यू विल जॉइन मी अगेन नेक्स्ट वीक बिटवीन 3 and 6 PM राइट हियर ऑन 104.9 FM. दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir puja ka saman, gifts bhi khareedne hai aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
7: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
8: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, catering services, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
9: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: तीन पे क्यों अटक गया?
17: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
18: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
19: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्डर टू गेम.
20: बेटा 95% आए?
21: हाँ मम्मी.
20: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
11: मेरा?
20: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
22: वही आवाज
1: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
22: तुमसे मिलके दिल का है.
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.
1: हाँ भाई सेठी।
2: हाँ जी मनीपा जी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, करता बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरत तेनू हाले, पार्टी करदा दे है तू।
3: पाजी उस गोरे से घर लेके बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए बहुत साल हो गए, दादी नु मिलन आया सी एक बारी।
2: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
1: तू लगता है तू पैग लाए होया।
4: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
2: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
4: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
1: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
2: पर दादी

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

Two things bring happiness and success in life. The way you manage when you have nothing, and the way you behave when you have everything. इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ. हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनिशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा. स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का. आपका और मेरा आज का साथ रहने वाला है दोस्तों 6 से 9. जी हाँ, वैसे तो हमारा और आपका साथ रहता है 6 से 8, बट आज वो साथ 1 घंटे का बोनस हो गया है और हमारा साथ रहेगा आज 6 से 9. तो जुड़ जाइए दोस्तों आप 3 घंटे के इस खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा के साथ. तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी दीवानी तूफानी बेगानी.

अपनी अपूर्वा के साथ। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली, और आज जैसे बहुत ही कड़ाके की गर्मी वाली। कैसे भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल। गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरो।
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
8: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
9: पैन इडली वेजिटेबल

0: vegetarian restaurant. 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali. Aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
1: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 2148692668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
8: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।

गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम बैक. जिंदगी के कई रंगों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए 104.9 FM फन एशिया रेडियो. दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा. एवरी संडे की शाम वैसे तो 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट आज का ये साथ कुछ डबल बोनस हो गया है. तो आज का आपका साथ मेरे साथ रहने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक. तो जुड़ जाइए दोस्तों इस 3 घंटे के खूबसूरत सफर में मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा के साथ. कमाल करेंगे, धमाल करेंगे और अमेजिंग गाने सुनेंगे, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के. अभी तो मैं फिलहाल आपको 90s के बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाने सुनवा रही हूँ. तो अगर आपका 90s का कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाना जहन में आ रहा है या फिर सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, गिव मी अ कॉल. स्टूडियो का नंबर 9722355555. विद दैट आपको लेकर चलती हूँ मेरे 90s के फेवरेट गाने की तरफ. ये तो भाई माशाल्लाह कमाल का गाना है. गाना दिखाया भी बहुत कमाल का है और गाया भी बहुत कमाल का है. आई एम श्योर आप सभी को पसंद आएगा. कीप द कॉल्स कमिंग इन. अगर आपके भी कोई इच्छा आकांक्षा है, मनोकामना है 90s के अच्छे अच्छे गाने सुनने की, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर.

ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी परदेस। कहा था ना दोस्तों, जितना ही खूबसूरत गाना गाने में है वैसा ही खूबसूरत गाना देखने में भी। जी हाँ, इस गाने का वीडियो भी इतना ही खूबसूरत है। आई मस्ट से महिमा चौधरी लुक्ड ब्यूटीफुल इन दिस मूवी एंड द केमिस्ट्री दैट शी हैड विद शाहरुख खान वाज अमेजिंग। वैसे तो अभी 90s के गाने चलने वाले हैं, तो अगर आपका भी कोई 90s का गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, 9720355555 है स्टूडियो का नंबर। अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले बता दूं दैट यू मे ड्रीम योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशन एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स, देयर एक्सपीरियंस्ड टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस tailored to your needs, whether you are buying your first home, upgrading or refinancing. Start your home ownership journey with confidence today. You can call them. The number to call is 972-245-5626 or you can visit their website which is dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen.

दुल्हन हम ले जाएंगे मूवी से. दोस्तों सुने थे आप ये गाना फ्रॉम द मूवीज ऑफ 90s. 90s के कोई गाने आपको सुने हैं या फिर सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे. उससे पहले आपको बता दूं दैट इफ यू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपेंसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू. So for a free consultation, you can call them. The number to call is 469-300-5046 or you can visit their website which is attorneyomar.com. अगली गाने की रिक्वेस्ट दोस्तों सचिन की तरफ से आई है तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं एंड एंजॉय करते हैं.

too much of beauty happening in one frame. Oh my God, Madhuri Dixit and Manisha Koirala looked amazing in this song, and the song was beautifully sung by Alka Yagnik, taken from the movie Lajja. जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उन सभी को बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। दोस्तों वैसे तो एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट आज का ये साथ बोनस हो चुका है और इसमें एक घंटा और ऐड हो चुका है। तो आज आपका और मेरा साथ रहने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक। 90s के कमाल धमाल के गाने यहाँ पर चल रहे हैं, तो अगर आपको भी कोई 90s का गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, दीजिए मुझे कॉल। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ इस गाने की तरफ, उसके बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक, कहीं मजाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो।